aren't you thankful it is Friday? Oh my God, Friday is the best day because अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है वीकेंड और वीकेंड का वाइब ऑलरेडी क्रिएटेड है. What you say? ना यही तो गाना बज रहा था ब्रेक पे जाने के पहले. The Sonu Nigam song, Sonu Nigam Revolution. Don't miss this. Trust me, such a fun concert. You will remember. This you will remember and always go back home very feeling satisfied and saying, concert ho to Sonu Nigam jaisa.

so beautiful. So उन्होंने कहा श्रेया घोषाल, संजय दत्त और इस ही फिल्म में आपको विद्या बालन नजर आती है. और पता है जब भी मैं ये गाना प्ले करती हूँ और बैकग्राउंड म्यूजिक भी मेरा जो बनता है ना, इस वाले फिल्म में विद्या बालन वॉज एन आरजे और मुझे ये डायलॉग उनका हमेशा बहुत पसंद आता है एंड आई लव इट. यू नो जो वो कहते हैं गुड मॉर्निंग, मैं डालिस कहूँगी बट वो कहते हैं मुंबई, गुड मॉर्निंग मुंबई. आज का ख्याल इन सब के लिए है जो दौड़े चले जा रहे हैं शहर में. शहर की इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है, जब यही जीना है दोस्तों तो फिर मरना क्या है. पहली बारिश में ट्रेन लेट होने की फिक्र है, भूल गए भीगते हुए टहलना क्या है. सीरियल्स के किरदारों का सारा हाल है मालूम, पर माँ का हाल पूछने की फुर्सत कहाँ है. अब रेत पे नंगे पाओ टहलते क्यों नहीं, 108 है चैनल फिर दिल बहलते क्यों नहीं. इंटरनेट पे दुनिया के तो टच में है लेकिन पड़ोस में कौन रहता है जानते तक नहीं. मोबाइल लैंडलाइन सबकी भरमार है, लैंडलाइन तो आजकल है नहीं वैसे, ये बदल गया है दिन. वैसे मोबाइल लैंडलाइन सबकी भरमार है लेकिन जिगरी दोस्त तक पहुंचे ऐसे तार कहाँ हैं. कब डूबते हुए सूरज को देखा था याद है, कब जाना था शाम को गुजरना क्या है. तो दोस्तों शहर की दौड़ में दौड़ के करना क्या है, अगर यही जीना है तो फिर मरना क्या है. वैसे ये लिस्ट में अब सोशल मीडिया भी जुड़ चुका है. सुबह से शाम तक फोन लिए हाथ में हम बैठे रहते हैं और बस स्क्रॉल करते रहते हैं इधर से उधर उधर से उधर, कहीं रुकते नहीं. और वहीं मुस्कुराते भी हैं, वहीं आश्चर्यजनक भी हो जाते हैं, वहीं वहीं वहीं बैठे रह जाते हैं घंटों. यहाँ ऐसे घंटों बैठकर रखा क्या है, कब मिले थे वो दोस्त और जिया था हमने. इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है, अगर यही जीना है दोस्तों फिर मरना क्या है. पॉइंट टू बी नोटेड है ना. चलिए मूव ऑन तो हो ही जाते हैं विद अनदर सॉन्ग फॉर यू. इंटरेस्टिंग है.

History is written in books, but it is felt inside home. ये जो गाना है, The Foundation of Kachori Gali, इसका नाम है Coke Studio भारत का presentation. It is built on as we walk through the narrow bylanes of Banaras. और ये जो है आपकी आवाज़ें पहचान तो गई होंगे, रेखा भारद्वाज की आवाज़ पहचान लिए होंगे, उत्पल उद्दित उनके साथ, और ये विजन रहा है ख्वाब साहब का. और वो कहते हैं, वी विटनेस अ वाइफ्स डिवोशन एज शी नेविगेट्स अ वर्ल्ड सडनली एम्प्टीड ऑफ इट्स हार्ट बीट. द कचौड़ी गली. हर स्टोरी इज नॉट वन ऑफ पोलिटिकल थ्योरी बट ऑफ पर्सनल रेजिलियंस, अ फ्यूचर इंटरप्टेड येट अ लव that remains unyielding. And this one brought to you right here on Funija Radio, the Kachori Gali. Did you enjoy it? Phone uthayega, number dabayega, mujhe batayega. 9722355555 hai studio ka number. Waise ab shuru hota hai aapke liye wo game show jiska intezar rehta hai aapko. ये गाना तो बनारस की गलियों से आया था, लेकिन यहाँ पर हम गल हिंदी हिंदी ही बोलेंगे. उर्दू हम डाल सकते हैं शब्द, बट नॉट अलाउड इज अंग्रेजी. पता नहीं कहाँ से घुसी चली जा रही है नो एंट्री पर हमारे ही इस शो में, इस गल हिंदी हिंदी के सेगमेंट में. बस पकड़ पकड़ के बाहर निकालेंगे वो शब्दों को. फोन उठाएगा, नंबर दबाएगा. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. और यहाँ पर कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने जो मैंने लाइन अप किए हैं, दिस वन फॉर यू.

0: Such a beautiful song, right? ओटी थी का चमत्कार मुसाफिर कफे, बहुत ही कमाल का सीरीज़ है एंड पीपल हैव बीन अप्रिशिएटिंग इट सो मच एंड वी आर डेफिनेटली वेटिंग फॉर द सेकेंड सीज़न. और कभी कभी कुछ कुछ हार्ट टचिंग एपिसोड्स और सीरीज़ आ जाते हैं, सो दिस वन इज़ वन ऑफ इट. एंड आई थिंक मुसाफिर कफे ऑल्सो हैड सम ब्यूटिफुल सॉन्ग, सो वन ऑफ इट वॉज दिस. चले लेती हूँ मैं अपने नेक्स्ट कॉलर को ऑन फनीशा रेडियो फॉर गर्ल हिंदी हिंदी बोल. स्वागत है आपका गर्ल हिंदी हिंदी बोल पर. बी ऑफ योर स्पीकर फोन एंड ब्लूटूथ प्लीज.
1: नमस्कार, मैं रविशंकर।
0: जी आप स्पीकर फोन से हट जाइएगा या फिर आप ब्लूटूथ पे हैं. कैन यू रविशंकर
1: आवाज
0: जी,
1: आ रही है? आवाज आ रही है?
0: आवाज तो आ रही है बट उसमें एक फीडबैक है.
1: अच्छा, अब तो नहीं, अब मैंने हट गया हूँ, अब तो अब नहीं है।
0: ऑलराइट है तो आई थिंक आप ब्लूटूथ पे हैं अब.
1: नहीं, मैं ब्लूटूथ पे नहीं हूँ। मैं ब्लूटूथ से हट गया। मैं
0: ऑलराइट आई
1: आवाज आ रही
0: बिलीव
1: है?
0: यू. आवाज आ रही है बट फीडबैक भी आ रहा है. आई विल ट्राई. ओके नो वरी. रवि शंकर जी वेलकम टू गर्ल हिंदी हिंदी बोल.
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार. आपका टाइम स्टार्ट कर दूं?
1: जरूर।
0: वेरी नाइस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यानी कि अब आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते. ओके
1: कोशिश करूंगा।
0: वेरी नाइस. आप तो बहुत अच्छी कोशिश करते हैं. आप तो कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई थी वैसे?
1: जी एक बार फिर से बोलिए। भारत
0: कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई थी?
1: से।
0: वेयर फ्रॉम? व्हाट डिड यू डू?
1: अभियंता की डिग्री है मेरे पास।
0: डिग्री है ना. अभियंता वॉज सुपर बट यू नो दिस जेंटलमैन हैज वन सो मेनी टाइम्स. तो रविशंकर जी आपको तो हरा के मुझे एक्चुअली डिफरेंट वाली खुशी मिलती है, लाइक जो मोगैम्बो को मिलती थी. मोगैम्बो खुश हुआ बट आप जल्दी से हारते नहीं है. आज थोड़े ऑफ गार्ड पकड़ लिए गए बट डोंट यू
1: मुझे
0: वरी,
1: उम्मीद है।
0: यू वर यू
1: धन्यवाद।
0: ऑलवेज सो गुड. बट थैंक यू सो मच. देखिए रविशंकर जी चिट से पट हो गए बट ही इज, आई नो ही इज वन मेनी मेनी टाइम्स, सो आई विल स्टिल गिव इट टू हिम. 104.9 FM फनीजा रेडियो सुन रहे हैं. और यहाँ पर जो अगला गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, इट्स अ डिफरेंट सॉन्ग वंस अगेन. मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला गाना बजा दूँ और आपको बता दूँ प्रिटी जिंटा का स्वीट फेस आप फिर से नजर आने वाला है.

0: This Vibe, Priti Zinta stars with Kunal Khemu in Vibe. Yes, that is released today. Kunal Khemu has written, directed, produced and acted, in the action comedy. His second directorial outing after Madgaon Express. Madgaon Express was his first. And Priti Zinta fans, aapke liye, ye hamari dimpled girl is back. There's something about seeing Priti Zinta on the big screen again that instantly takes you back to Kal Ho Na Ho, Veer Zara, Dil Chahta Hai. Wo sare feelings wapas aa jate, right? So there you go. Priti Zinta back on Vibe. Aur maine aapko ye bataya tha pehle, I think Bollywood buzz ki kahani do hafte pehle, ki Sharmila Tagore is also doing a cameo role in this one. चलिए लेती हूँ मैं अपने अगले कॉलर को ऑन गल हिंदी हिंदी बोल. वेलकम वेलकम ऑन गल हिंदी हिंदी बोल. हाउ आर यू?
1: या आई एम गुड, दिस इज आशीष.
0: आशीष, आई एम ग्रेट, थैंक यू सो मच. आप कुछ ना कुछ पे तो हैं, या फिर ब्लूटूथ पे या फिर स्पीकर फोन पे?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ और घर पहुँचने वाला हूँ ऑलमोस्ट.
0: बट देन जितना भी ऑलमोस्ट हो, बट आप ऑन एयर है, नॉट ऑलमोस्ट बट एक्चुअली, बट वी कैन नॉट हैव दिस डिस्टर्बेंस.
1: नहीं मेरा हो ही गया है. आई थिंक लेट मी जस्ट डू वन थिंग, आई एम जस्ट नियर टू द कॉम्प्लेक्स.
0: मतलब ये तो हम उनके साथ ड्राइव कर रहे हैं, आशीष के साथ कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द हैं, हो ही गया है. मतलब ओ माय गॉड, मतलब पूरे डैलस को समझ आ रहा है, पता चल रहा है, बट आप बस पार कर ही लीजिए.
1: हाँ हो गई पार्क, अभी कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या?
0: नहीं अभी तो नहीं आ रही है. वक्त शुरू कर दिया जाए आपका?
1: हाँ बिल्कुल.
0: चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. डिस्टर्बेंस अभी भी है बिकॉज यू आर स्टिल ऑन ब्लूटूथ. बेटर होगा आप उससे बिल्कुल ही हट जाए.
1: हाँ जी अभी ठीक है.
0: वंडरफुल, देखिए कितना ठीक. So Ashish, your time has started. So don't make any mistakes of using an English and saying कि मुझे थोड़ा सा भी idea नहीं था कि वक्त शुरू हो गया है, okay? Ashish, कहाँ से आ रहे इतने दूर से चला कर गाड़ी?
1: अरे बस बेटे को थोड़ा छोड़ने गया था, तो बस छोड़ के आ रहा हूँ.
0: तो आप ही ड्राइवर हैं?
1: हाँ हाँ. तो बिल्कुल हम ही चला रहे हैं वाहन अपना.
0: तो कितने अभी तक बेटा ड्राइव करने लायक नहीं हुआ?
1: नहीं नहीं अभी तक तो नहीं.
0: सो गुड, एट लीस्ट दे आर पार्ट ऑफ यू. वंस दे स्टार्ट ड्राइविंग देन दे डोंट नीड यू इवन एट ऑल, यू फील दैट?
1: हाँ बिल्कुल, ये सब चीजें तो बाद में महसूस होंगी.
0: बाद में. हाउ ओल्ड इज योर बच्चा?
1: ये 14 साल का है अभी.
0: बस होने वाला यार 15, एंड देन ही विल गेट द लर्नर्स लाइसेंस.
1: मेरे 14 होने वाला है अभी, बस कुछ दिन में है उसका.
0: ऑलराइट, तो 2 साल बचे हैं बिफोर ही सेज हेलो पापा, आई डोंट नीड यू टू ड्राइव मी.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: सो व्हाट डज ही डू? कहाँ पर ड्रॉप किया है आपने उन्हें?
1: उसके किसी दोस्त के घर में.
0: तो दे आर डूइंग अ नाइट आउट और बस पढ़ाई कर रहे हैं?
1: हाँ हाँ बस बस. नहीं नहीं उसका भी जन्मदिन है तो.
0: हैप्पी बर्थडे, सो लवली, दैट्स वेरी नाइस. अ बिग शाउट आउट गोज टू यू हिम. व्हाट इज हिज नेम?
1: बेटे का?
0: हाँ
1: अक्षज.
0: अक्षज का बर्थडे है कि उसके दोस्त का?
1: दोस्त का है आज, अक्षज का एक सप्ताह बाद है.
0: ओह सो बोथ ऑफ देम सेलिब्रेटिंग, वाह, बेस्ट फ्रेंड्स. हां
1: हां,
0: वंडरफुल, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू. आप शाउट आउट दीजिएगा अक्षज को एंड हिज फ्रेंड एज वेल.
1: थैंक यू थैंक यू.
0: अरे ये थैंक यू,
1: धन्यवाद. अरे मैं भावनाओं में बह गया.
0: भावनाओं में, वही तो. भावनाओं में बह कर ये मंगे. But you were good. Thank you so much.
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा बात करके. Thank you.
0: Very nice. Thank you so much. You have a wonderful evening and a great weekend. मजे कीजिए. हाँ मजे कीजिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप भी.
0: थैंक यू.
1: चलिए
0: बाय बाय. ये देखो ना, फंसा लिया मैंने आज तो. थैंक यू, मैं फंसा लिया. 104.9 FM फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं. मैं आपकी होस्ट हूँ नवनीता. वैसे होस्ट हूँ, घोस्ट नहीं हूँ, बस फंसाने में मजा आता है. और मोगैम्बो तो गब्बर और शाकाल बिल्कुल नहीं हूँ यार. वॉट इज दिस, हाउ कैन यू नेम मी लाइक दैट? बट हियर, प्रीति ज़िंटा का बात किया था ना मैंने. This one for you, Priti Zinta. You are in Vibe. You still have the Vibe. And we would love to watch you again.
2: ये तो अपने कपड़े उतार रही है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सभी नंगे हैं, देखना, यार, come on ना

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
3: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
2: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
3: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
4: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं ही तो।
9: How may I help you?
10: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
9: Fear not, we have the perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
12: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
13: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
12: कैसे?
13: पेज 3 ईटरी?
12: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
13: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
12: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
14: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
1: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
15: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 AM to 5 PM Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
16: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
0: वेलकम सलाम अलैकुम सस्री अकाल कैमो नाचो केम छो स्वागत है आप सबका 104.9 FM फनीजर रेडियो पर मेरे शो पे जिसका नाम है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे और दिस थैंक गॉड इट्स फ्राइडे में एक मुस्कान न हो झिलू राम की हंसी न हो तो अधूरा रहेगा ना फ्राइडे तो चलिए झिलू राम हो जाए हियर वी गो सो सासू माँ ने अपने फौजी दामाद को खत लिखा और कहा मेरी बेटी को तना छोड़कर तुम सरहद में मजे मस्ती कर रहे हो शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ कोई भी बहाना बनाकर छुट्टी ले लो झिलू राम कभी कभी बहुत दिमाग वाले होते हैं कहते हैं ये हमारे फौजी दामाद सासू माँ को एक हैंड ग्रेनाइड बम के साथ खत लपेट कर भेज दिया और उसमें लिखा था प्यारी सासू माँ अगर आप इसकी पिन खींच लेना तो मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल जाएगी आइडिया तो सुपर है

मज़ा आ गया। और मज़ा एक्चुअली ये जो त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है उसमें भी मज़ा आ जाता है, और उस मज़े पर चार चांद लग जाते हैं जब आपको कहीं से कोई गिफ्ट मिल जाता है या फिर आप किसी को भेज दे कोई गिफ्ट और उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो मज़ा आ जाता है। पता है SFL वर्ल्ड वाइड ये मज़े को दुगना तिगना कर देते हैं। फेस्टिवल सीजन में वो कहते हैं देसी आउटफिट्स होनी चाहिए, मिठाइयाँ, नमकीन और सारी ये जो फेवरेट गुडीज़ है ना आप घर ला सकते हैं विद SFL वर्ल्ड वाइड विद डोर स्टेप पिकअप एंड डिलीवरी, और प्लस ओशन शिपिंग फॉर लार्जर आइटम्स लाइक पूजा मंदिर, झूला और फर्नीचर, ये सब भी मुमकिन है। तो है ना मज़ेदार बात, मज़ा ही आ जाएगा। शिपिंग और मूविंग चाहिए विद इन द USA फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, आप विजिट कर सकते हैं SFLWorldwide.com। फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए 800-691-2335। SFL वर्ल्ड वाइड ब्रिंगिंग फेस्टिविटीज क्लोजर टू होम, मज़ा ही आ जाएगा। 104.9 FM फनीजा रेडियो पर आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, मैं हूँ आपकी होस्ट नवनीता पांसल स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट लेकर अपना शो। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और वैसे आप अगर और मज़े चाहते हैं तो फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए फॉर गर्ल हिंदी हिंदी बोल।

104.9 FM फनीजा रेडियो है दोस्तों, मैं आपकी होस्ट नवनीता। वैसे एक झेलू राम की बात है, लेकिन उसकी मदद भी मेरे पास है, लेकिन आपको बता ही देती हूँ। पता है तो झेलू राम ने कॉल किया, एक्चुअली जल फ़ोन उठाया और एम्बुलेंस बुलाया और कहा जल्दी से यहाँ एक एम्बुलेंस भेज दीजिए, मेरे दोस्त को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है, उसके नाक से खून बह रहा है और शायद उसकी टांग भी टूट गई है, ओ माय गॉड कुछ कीजिए। तो ऑपरेटर ने कहा आप किस जगह पर है, कृपया मुझे बताइए। तो झेलू राम ने कहा कनॉट प्लेस में। ऑपरेटर ने कहा आप मुझे स्पेलिंग जल्दी से बताइए। आगे से ना कोई आवाज़ नहीं आई। सर आप क्या हैं, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? दूसरी तरफ से अभी भी कोई आवाज़ नहीं आई। सर प्लीज़ जवाब दीजिए, क्या वो आदमी ठीक ठाक है, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? झेलू राम हाँफते हुए कहता है हाँ हाँ माफ़ करना, मुझे कनॉट प्लेस की स्पेलिंग नहीं आती थी, इसलिए मैं उसे घसीट घसीट के मिंटो रोड लेकर आ गया हूँ। मिंटो का स्पेलिंग जल्दी से लिख लीजिए। झेलू राम बट आप फिर भी उमर ख्वाजा को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो इंजरी अगर आपकी होती है कार की तो भी आपको ज़रूरत होगी कि ये जो स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट कुछ भी हुआ, आप टेंशन एम्बुलेंस वाली तो है ही, उनका ट्रीटमेंट ज़रूर कराए, पर अगर ये ट्रीटमेंट्स के सारे पैसे आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो अटॉर्नी उमर ख्वाजा हेल्प कर सकते हैं और आपको तब तक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये आपका केस ना जीत जाए। फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए 4693005046 और विजिट अटर्नी उमर ख्वाजा। यू नो ऑल दीज एक्सीडेंट्स, इतना झेलू राम परेशान थे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, बट उनके फ्रेंड को मुआवजा भी मिलना चाहिए।

ब्यूटीफुल सॉन्ग. ये तो सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति डिमरी ये फिल्म में धड़क 2 में दिखाई दिए ये गाने के साथ. लेकिन आपको मिल सकता है जीतने का एक मौका. दो लोगों को मैं दूंगी ये अवसर. When you can experience Mirage Lounge for premium hookahs, delicious bites, cocktails, live music and DJ nights. आप इंजॉय कर सकते हैं हैप्पी आवर मंडे थ्रू थर्सडे 11 AM टू 6 PM प्लस लेडीज नाइट एंड कॉलेज नाइट. और आप अगर जवाब देते हैं इसका तो दो विनर्स को मैं उनका एक गिव अवे देने वाली हूँ. तो आप बताइए मुझे ये वाले गाने की आवाज़ किसकी थी. एक मेल वॉइस है और दो मेल वॉइस एक्चुअली और एक फीमेल वॉइस है. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. एक मेल वॉइस भी आप बता दें और एक फीमेल वॉइस, दैट विल गिव मी 2 विनर्स. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. और वो वाला जो गाना बज रहा था, एक बार आपको हल्का सा और सुना देती हूँ विद द वॉइसेस. देयर यू गो.

0: Sorry, I lost that call. Good evening, Panjshir Radio. You are live on air.
1: Hi, this is Tania.
0: Tania. Hi, Tania.
1: जी मुझे खाली दो ही पता है सिंगर्स के नाम इस गाने का hmm. एक जॉनिता गांधी है जो फीमेल सिंगर एंड दर्शन रावल आई डोंट नो अबाउट अदर सिंगर
0: व्हाट इज योर फुल नेम
1: माय फुल नेम
0: या
1: तानिया मुखर्जी
0: ऑलराइट कीप लिसनिंग आई विल जस्ट अनाउंस द विनर गुड इवनिंग फनीशिया रेडियो यू आर लाइव ऑन एयर गुड इवनिंग फनीशिया रेडियो यू आर लाइव ऑन एयर
2: Hey, hi.
0: Hi.
2: Is it Darshan Rawal?
0: Darshan Rawal. What is your name?
2: Neha.
0: Neha what? Full name?
2: Neha Mishra.
0: Sorry?
2: Neha Mishra.
0: Neha Mishra. Thank you so much. And you are also correct. And the previous caller, Tania Mukherjee, you were also correct. So I'll give both of you this giveaway. So aap kahin mat jayega. I'll take your information. And this one is a giveaway from Mirage Lounge. And you win a $20 off coupon. Just hold on.
2: Thank
0: I'll give you the details.
2: Yeah.

ये गाने जब लौट लौट के आ जाते तो वाओ वाओ वाली फीलिंग आ जाती है ना. वी हैव लव दीज मूवीज, वी हैव लव दीज सॉन्ग्स. कभी कभी ना फुल फैमिली के साथ वो फिल्म जो फील गुड मूवी रही है उसको वापस देखने का मज़ा ही कुछ और है. एंड दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, जो अनगिनत बार मैंने खुद से ये जवानी है दीवानी फुल फैमिली बैठ के देखे हैं. एंड वी हैव जस्ट लव्ड द मूवी. एंड आई होप यू आर हैविंग अ लवली लवली टाइम. जैसे कि किसी ने कहा, लव यू जिंदगी. और आप अगर लव यू जिंदगी जैसा लव लेटर जिंदगी को लिखेंगे, डियर जिंदगी लव यू.

बस जिंदगी को आज यही लव लेटर लिख दीजिएगा, लव यू जिंदगी, और फिर जिंदगी विल रिटर्न दैट बैक टू यू बाय सेइंग लव यू माय स्वीट हार्ट। और फिर देखिए कैसा कमाल का शिफ्ट होता है, द शिफ्ट ऑफ द प्लेन विद दैट पॉजिटिव एटीट्यूड। Good night, sleep tight, get up happy, fresh and bright. Wishing you a flowerful morning, a colorful noon, a joyful evening and a peaceful night. And I know it's going to be a fabulous day for you tomorrow when you start it with a cup of positivity. Wo chai jo bas aapko sirf positivity hi deti rahegi. Yeah? You cannot pour from an empty cup. Take a deep breath, sit still, let your soul catch up. And the morning cup is not just for coffee, it's a vessel for peace, prayer, and

0: विटी ही देती रहेगी. या यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, टेक अ डीप ब्रेथ, सिट स्टिल, लेट योर सोल कैच अप. एंड द मॉर्निंग कप इज नॉट जस्ट फॉर कॉफी, इट्स अ वेसल फॉर पीस, प्रेयर एंड प्रेजेंस एंड द पॉजिटिविटी दैट यू ब्रिंग इन. Let the world wait while you refill, because you deserve the same care you give so freely to others. With that thought, bye-bye. Take care of yourself and people who you love and care. Aur milengi main agle hafte, same jagah, same time, 5 se 8 straight from the heart, apna show, ye jo har hafte, Friday mein, I bring the vibe of weekend.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Ek aur laddu le lo.
6: Thodi aur biryani.
5: Are America jaake thodi milega.
7: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए.
8: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए. स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, वी आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रोस्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स. कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259. पैशन Health Primary Care.
9: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
11: हेलो, Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट attorneyumar.com.

स्वामी, आग जरा देख लो, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये फूल से बच्चे तो सुधीर भाई को ललकार सकते हैं, एक तू है जो अपनी जान बचाए खड़ा।

नमस्कार एंड वेलकम बैक टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो। जी हाँ, मैं हूँ आरजे स्वाति और तहे दिल से हाथ जोड़कर आप सभी सुनने वालों का अभिनंदन करना चाहती हूँ आप ही के फन रेडियो स्टेशन 104.9 एफएम पर। आपको बता दूं डैलेस कि आजकल सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, पता है? आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई आज के जमाने को, यानी प्रेजेंट को छोड़कर पास्ट में जाकर अपने आप की तस्वीरों के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आजकल सोशल मीडिया खोलो तो हर तरफ एक ही ट्रेंड चल रहा है कि 80s में हम कैसे लगते, और टाइम ट्रेवल हो चुका है। लोग आगे जाने के बजाय आजकल पीछे जाने वाली चीज़ कर रहे हैं। मतलब अगर हम सब टाइम मशीन में बैठकर अगर सीधा सीधा 80s के दौर पर पहुंच सकते तो ज़रूर पहुंच जाते। वो दौर जहां गानों में एक अलग ही सुकून था, एक अलग ही मस्ती थी, उसके लिरिक्स में इतनी गहराई, और म्यूज़िक जो होता था वो बड़ा कमाल का होता था। और मुझे लगा कि जब ये नॉस्टैल्जिया का सफ़र हम शुरू कर रहे हैं तो इसको एंजॉय करते हैं साथ साथ। ऐसा कोई होगा नहीं, शायद ही कोई सोशल मीडिया पर होगा जो कि 80s के दौर से छूटे होंगे, जो अपनी पिक्चर को 80s के दौर पर ट्रांसफॉर्म नहीं किया। वैसे मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड फॉलो नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी भी ये हालत हो गई थी कि मैंने तक एक बार के लिए अपने आप को देखने की कोशिश की कि अगर मैं होती तो मैं कैसी लगती। तो अगर आप उस ट्रेंड से छूट गए हैं ना डैलस, तो आपको बता दूं कि मैं ले चलूंगी आपको। आज हम एंजॉय करेंगे फ्राइडे वाइब। आज फिर से है फ्राइडे की ये वंडरफुल मंगल बेला, जहां पर मैं आपके साथ फ्राइडे वाइब नो फिल्टर फ्राइडे लेकर जुड़ गई हूं। और आपको पता है ना कि वाइब वाले सॉन्ग्स बिल्कुल मेरी नज़रों से नहीं छूटेंगे। अगर आपको लगता है कि 80s के इस नॉस्टैल्जिक दौर में आप अपनी पिक्चर को रिक्रिएट करने में चूक गए थे, तो मेरी गाड़ी पर सवार हो जाइए। चलिए मैं ले चलती हूँ आपको अपना हाथ पकड़े और नॉस्टैल्जिया फील कराती हूँ। आइए मेरे साथ। अगर कोई गाना आपके जहन में आ रहा हो तो 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, बताइएगा ज़रूर कि नॉस्टैल्जिक 90s के बेहतरीन वाइब वाले गाने में से आप कौन सा सुनना चाहते हैं।

वंडरफुल वंडरफुल सॉन्ग, व्हाट अ ब्यूटीफुल नंबर. एंड डैलस, आपको मैंने जैसे कि बताया कि हमारे स्टूडियो का नंबर है 9722355555. 80s के खजाने में हाथ डाला है आज मैंने, और आज तो ये खजाना लुट जाने वाला है. एंड आप जरूर इस खजाने का मजा लेने वाले हैं. तो अगर आपके दिमाग में भी कोई बात हो तो जरूर बताइएगा. देखिए, अपनी यादों की डायरी खोल लीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज हम 80s के दौर पर पहुंच चुके हैं. और यहाँ जो है म्यूजिकल कलर्स देखने को मिलेंगे आपको, एवरग्रीन 80s एरा के ब्यूटीफुल नंबर. और मैं हूँ आरजे स्वाति. चलिए कुछ देर के लिए फिर से हम वही पुराना जमाना जीते हैं जिसमें आपको ले जाने की गुस्ताखी कर रही हूँ, लेकिन जब ले जाऊंगी तो आप मुझे यू नो थैंक मी लेटर डैलस.

और ब्यूटीफुल नंबर बप्पी लहरी का म्यूजिक सबसे ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा 80s के दौर में, क्योंकि डिस्को किंग माने जाते थे. एंड जो उनके गानों में एक वाइब वाली बात होती थी ना, जैसा हमारा शो का थीम है, वो भर भर के होता था. एंड आप गाने की जब तार छिड़ते हैं ना, मतलब म्यूजिक का जो शुरुआत होता है उसी से ही आप बता सकते हैं डैलस की ये गाना जो होगा ना, ये किसने कंपोज किया होगा. तो बप्पी लहरी जी के गाने अलग से समझ में आते हैं. एनीवेज, अब जो मैंने लाइनअप किया है गाना, वो गाना आनंद जी ने अपने आनंद के लिए रिक्वेस्ट किया है, यानी कि आनंद लेते लेंगे वो ज़रूर इस गाने का. अलॉन्ग विथ यू ऑल डैलस, दिस सॉन्ग गोज आउट टू द डैलस का फोक्स एंड डैलस की पीपल, जो कि म्यूज़िक से बहुत प्यार करती है, जिनको अच्छे गाने सुनने का शौक है, जिनको टाइम ट्रेवल करके थोड़ा पीछे जाकर 80s के एरा को खूबसूरती से एंजॉय करना है. लीजिए, एंजॉय कीजिए दिस ब्यूटीफुल नंबर फ्रॉम द फिल्म कुर्बानी, एंड रिक्वेस्ट की थी आनंद जी ने.

सो डैलस, अगर आपको भी अपने सपनों का घर चाहिए तो योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक. सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प्ड फैमिलीज नेशन वाइड विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशन और फॉर बाइंग और रीफाइनेंसिंग. तो आपको अपने सपनों का घर दिलाने में मदद करेंगे ड्रीम होम मॉर्गेज. आपके लिए नंबर है जहां पर आप रीच आउट कर सकते हैं 9724556626, या फिर उनके वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं dreamhomemortgage.com. ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स happen, and this is happening and already happened to many of the folks. और ये इतने सालों से आपके लिए तत्पर हैं, तो ज़रूर इनका नंबर चेकआउट कीजिएगा, इनसे कंसल्टेशन कीजिएगा 9722455626 dreamhomemortgage.com. another beautiful number from the 80s का खजाना.

0: गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
4: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं।
4: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं।
4: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं।
4: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. It's the time to clock out.
5: It's the time to catch up. And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
5: कितनी लंबी लिस्ट है?
6: बस 2 pages। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
5: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
7: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया।
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
12: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
13: तुमसे मिलके दिल का है।
12: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
14: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
15: किया।
14: कभी किसी को दिल

चलो देखिए, शांति तो होनी चाहिए लेकिन जीवन में और मन के अंदर. आप लोगों की जो ये मेरे शो के दौरान शांति होती है ना, ये मुझे मज़ा नहीं आता. मुझे चाहिए होता है कि आप जो है कॉल करते रहें और बताते रहें मुझे कि कैसा जा रहा है मेरा प्रोग्राम, क्या फील कर रहे हैं आप, क्या कुछ तरंगे आपके अंदर उठ रही हैं, एंड क्या कुछ आप फील कर रहे हैं. कौन से ऐसे भूले बिछड़े लोग हैं जो अचानक याद आ गए हैं, क्योंकि मैं तो गाने ही ऐसे बजाती हूँ जिसमें ना आप चले जाते हैं उस जमाने में और पता नहीं कोई तो कहीं से जहन में आ जाते हैं. आप बैठे यहाँ होते हैं, याद किसी और को कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई अपने ज़माने से जुड़ी हुई जुड़ा हुआ वाक्य आपको याद आ जाता है ना, तो आप करने लगते हैं नॉस्टैल्जिक फील. एंड मैं आपको 80s के एरा में टाइम ट्रेवल करके ले गई हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर आजकल हर कोई अपने आप को 80s के एरा में ले जाने पर तुले हुए हैं. यू नो वॉट, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ की होगी, ट्रेंड फॉलो किया होगा, एंड देन कुछ छूट गए होंगे जिनको मैं लेकर चल रही हूँ आज अपने साथ साथ. मैं हूँ आरजे स्वाति और दे रही हूँ आपको नॉस्टैल्जिक 80s के खूबसूरत नगमों का रस और म्यूजिक रस एंजॉय करने का मौका. ये जो गाना आपने सुना, मेरी उम्र के नौजवानों, ये गाना अनुराग जी ने रिक्वेस्ट किया था. अनुराग जी, सॉरी, आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था. आप फिर से 9722355555 पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो बात आपसे चल रही थी वो अधूरी रह गई थी. इफ़ यू आर लिसनिंग राइट नाउ, यू कैन कॉल बैक नाउ. टेकिंग यू टू द अनदर ट्रैक. लेकिन ले जाने से पहले आपको एक जानकारी देते हुए चलती हूँ कि दिस पार्ट ऑफ अवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, ऑफरिंग ट्रस्टेड टैक्स अकाउंटिंग, पेरोल, बुक कीपिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. कॉल 4699429888 और विजिट AGFintechs.com.

My God, this is absolutely a 80s and nostalgic era ka beautiful number jisko sunkar hum sab bade hue hain yaar. Aapko pata hai na ki jahan 80s ke daur mein bade bade dhurandhar jo hain hamare musicians R.D. Barman sahab ho gaye jo hamare Bappi Lahiri unke beech mein ek ye gana aaya tha Hasan Jahangir ji ka jo unhone compose bhi kiya hai gaya bhi hai and ये गाना इतना कमाल कर गया था कि हर किसी की ज़बान पे ये गाना था और आज भी अगर ये गाना किसी पार्टी में बजता है तो कोई भी अपने पैरों को थिरकाने से रोक नहीं पाते हैं खुद को. हम एंजॉय कर रहे हैं 80s के नॉस्टैल्जिक एरास को. जब आप फोटो के थ्रू पीछे जाकर अपने आप को देखना चाहते हैं कि आप 80s में कैसे लगते हैं तो मैंने सोचा म्यूज़िक भी बेस्ट वे होता है अपने इमोशंस को जीने का और नॉस्टैल्जिक एरा को एंजॉय करने का जिसमें आप ब्यूटीफुल नगमों के थ्रू जाकर अपने अपनों से मिल पाते हैं और अपने अपनों को महसूस कर पाते हैं. लीजिए एक गाना R.D. बर्मन साहब का क्योंकि एक कॉल आया था जिन्होंने कहा कि अब आप R.D. बर्मन का कोई भी एक गाना लगा दीजिए 80s के दौर का, लेकिन यह है 75 के दौर का जहां पर जस्ट 5 साल की बात थी.

सर एलिस, क्या बात थी ना 80s की, कि 80s का ये जो बॉलीवुड में डिस्को का फीवर चढ़ा था ना, वो इसी एरा पे चढ़ा था. जी हाँ, 80s का बॉलीवुड एकदम अलग एनर्जी लेकर आया था. डिस्को डांसर ने मिथुन चक्रवर्ती को एक नई पहचान दे दी थी, और बप्पी लहरी के डिस्को साउंड ने हिंदी फिल्म म्यूजिक का फ्लेवर ही बदल दिया था. 80s के अर्ली ईयर्स में डिस्को और गजल दोनों का इन्फ्लुएंस स्ट्रांगली सुनाई देता था, लेकिन फिर बाद में आई एम अ डिस्को डांसर, जिमी जिमी जैसे गानों से वापस जाना थोड़ा मुश्किल हो गया था. तो चलिए लाइट्स थोड़ी डिम, इमेजिनरी डिस्को बॉल्स ऑन, एंड वापस चलते हैं हम एक ऐसे गाने की तरफ जो कि आपको देगा डिस्को वाला वाइब. लीजिए प्यार, दीजिए और प्यार लीजिए.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
2: ये क्या होता
3: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
6: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
7: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
8: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
7: कैसे?
8: पेज 3 ईटरी?
7: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
8: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
7: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
9: पेज 3 ईटरी. ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
10: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
11: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
12: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
13: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
14: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
15: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
16: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
15: सच में? सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
14: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

अकेला न्यायालय, आई एम हियर विथ यू, दिस इज आरजे स्वाति, फनीशर रेडियो 104.9 एफएम सुन रहे हैं आप मुझे, यानी हस्ती मुस्कुराती स्वाति को दे रही हूँ आपके 80s के नॉस्टैल्जिक एरा में आपका साथ, और मेरा और आपका साथ 8 बजे से शुरू हुआ है। इस वक्त 9:08 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी पर, फ्राइडे वाइब एंजॉय कर रहे हैं हम। देखिए, गाने के साथ साथ अगर खाने का भी मूड बन रहा हो तो बता दूं आपको कि द फ्लेवर लाउंज विच इज लोकेटेड इन फ्रिस्को इज नाउ सर्विंग इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे, जिसमें आप माउथ वाटरिंग डिलीशियस डिशेज को एंजॉय कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं। एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स भी हैं इनके पास, और यू नो फ्रेश फ्लेवर्स हैं जो कि आपको बिल्कुल पर पर्सन के हिसाब से 24.99 में ही मिल जाएंगे, यानी इतने रीजनेबल रेट में आपको इतना डिलीशियस फूड एंजॉय करने का और लाइव काउंटर शेफ स्पेशल्स एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। ज़रूर जाइए फ्लेवर लाउंज जो कि लोकेटेड है फ्रिस्को में। एंजॉय द बफे ऑन सैटरडे संडे फ्रॉम 12 PM टू 3 PM। टेक योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू मेक योर वीकेंड डिलीशियस एट द फ्लेवर लाउंज 5855 प्रेस्टन रोड फ्रिस्को। द फ्लेवर लाउंज, गुड फूड, गुड मेमोरीज। मेमोरीज की तो मैं क्या ही बात करूं, जब मैं आपको ऐसे ऐसे गाने सुनवा रही हूं ना डैलस, जिसके मजे आप मेरे साथ साथ रेडियो पर ले रहे हो, तो मैं तो आपको अच्छे से कह सकती हूँ, क्योंकि आपके कुछ कॉल्स भी आ रहे हैं, आप में से कुछ लोगों ने मुझे शायद पहली बार सुना है और वो मेरा नाम नहीं जान रहे हैं, और फिर भी आप जो है मुझे पूछकर, मेरा नाम पूछकर इस सेगमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, इस फ्राइडे वाइब को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, तहे दिल से शुक्रिया। अब भूलिएगा मत, हर फ्राइडे 8 to 10 PM मैं आरजे स्वाति आपको नॉस्टैल्जिक एरा में लेकर जाती हूँ और म्यूजिक का मजा दिलाती हूँ। अच्छा, एक गाना जो है वो किसी और एक गाने के साथ हो गया है मिक्स, वेट कीजिए मैं आपको सुनवाती हूँ ये ब्यूटीफुल नंबर जिसमें है अमिताभ जी, और हम एंजॉय करेंगे ये खूबसूरत गाना। क्या हो गया है भाई, देखिए डैलस, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए हैं बेकरार हम। फिल्म हम मूवी से सुरेश भोसले जी ने अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में गाया था ये गाना अलॉन्ग विद कविता कृष्णमूर्ति।

0: माई गॉड, दिस इज अ ब्यूटिफुल नंबर. डैलिस, आप समझ रहे हैं ना कि 80s के जो गाने, 80s के जो एरा के गाने मैं प्ले कर रही हूँ. हमने शुरू किया था डिस्को से, यू नो, एंड देन थोड़ा सा एक्शन और वो सब भी शामिल हुआ, एंड देन उसके बाद वापस से एक रोमांटिक एरा आया है जहाँ पर लता जी, आशा जी, इनकी बात तो हो गई, किशोर विशोर दा की बात हो गई है. इसके बाद ना अब कुछ और ही टेक ओवर होने वाला था, यानी 90s के रोमांस की तरफ हम बढ़ने वाले थे, 80s का एंड जाने वाला था, एंड देन उसके बाद यू नो माधुरी मोमेंट आता है, हमारे अलका याग्निक अनुराधा पौडवाल मोमेंट आता है, जहाँ पर अब जो सिंगर्स हैं ना वो बदल रहे थे और एरा का भी ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा था. लेकिन अभी भी 90s आया नहीं था, अभी 90s आने को था. अभी 88 तक हम पहुँचे थे, बस कुछ ही कुछ दो ही साल थे, एंड देन हम पहुँचने वाले थे इस ब्यूटिफुल नंबर की तरफ, जिसमें माधुरी के अरे भाई, मैं तो हमेशा से आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ डैलिस. आपको तो पता है ना कि मेरा एक टाइम होता है, वो है फ्राइडे से 8 to 10 PM, और यहाँ पर फ्राइडे वाइब देने के लिए मैं ज़रूर आ जाती हूँ. एंड मेरी जो खासियत है ना कि बातें थोड़ी सी कम और गाने बेहतरीन चलाना, है ना. तो आप बस वही एंजॉय कर रहे हैं. आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ और लिए चलती हूँ इस गाने की तरफ. हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी इस गाने के लिए ताकि हम माधुरी फीवर ऑन कर सकें. उसके पहले ये है इन्फॉर्मेशन कि अगर आप वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या कोई भी स्पेशल सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं तो वेनेसा इवेंट ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर. वेन्यूज, डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय बसेरा ग्रैंड. कॉल हरी बसेरा एट 4694428770. वेनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर. कहीं भी आप कोई भी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ज़रूर हरी जी को कॉल कीजिए 4694428770. अर लीजिए माधुरी के एक्सप्रेशंस को मैं एंजॉय करती हूँ, डांस के मूव्स मैं एंजॉय करती हूँ, और आप इस गाने की मधुरता को एंजॉय कीजिए.
1: इंतजार
2: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार.
2: कैसे?

0: एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस
1: Forever Madhuri, I'm celebrating her. Oh my God, जब भी मैं 90s की माधुरी की देखती हूँ, मैं हर बार मुझे इनसे प्यार हो जाता है. My God, full package, क्या अदाएं, क्या आँखें, क्या expressions, क्या खूबसूरती, क्या features, क्या moves, क्या acting. Oh, जितनी तारीफ करूँ डैलस उतनी कम है. आपको मैं क्या ही बताऊँ इनके लिए. काश ये जो AI में आजकल क्या क्या हो जाता है यार, हम सब कुछ कर सकते हैं. काश AI ऐसा भी होता कि हमें रियली में उसी एरा में ले जाता. ये सचमुच ही हम सिर्फ यादों में नहीं जाते, हम सचमुच में चले जाते हैं, ऐसा लगता है ना. वैसे एक मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि अगर आप भी परेशान हैं अपने आप को, आपको लग रहा है कि AI ने आपको काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, वर्क प्लेस में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, एंड यू फील लाइक यू आर स्टक एंड वंडरिंग इफ AI वर्क प्लेस changes are leaving you behind, then join four-time TEDx speakers and award-winning career coaches Shilpa and Kapil for a powerful career growth workshop. Learn how to reposition your value, strengthen your leadership presence, and accelerate your career with clarity and confidence. And it is happening in Dallas on September 19th. Register now at playitfull.com. playitfull.com/Dallas and start building your powerful career transformation story. ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको सच में लग रहा है कि AI सब कुछ टेक ओवर कर रहा है और आप कैसे अपने positions को सेव कर सकते हैं, then this workshop is for you. आज ही register कीजिए playitfull.com/Dallas and अपने आप को transform करने का, reposition करने का powerful strength build up कर लीजिए. वो कहते हैं ना कि कल पुर्जे नाचने लगे, ऐसा गाना है ये.

0: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
1: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
0: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
1: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
2: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: Sadia. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
10: तुमसे मिलके दिल का है।
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
11: नमस्कार एंड वेलकम बैक टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। मैं हूँ आरजे स्वाति और हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ आप सभी सुनने वालों का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू फन एशिया रेडियो। डैलस, ये जो मौसम है ना, ये पेरेंट्स के आने का मौसम है, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन भी है और हर कोई अपने अपने पेरेंट्स को इस सीजन में लेकर आना चाहते हैं, जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, है ना। तो मैं आप जो ये अगला गाना मैंने लगाया है फिल्म एक दूजे के लिए, एंड गाना है मेरे जीवन साथी। यू नो वॉट, एक ऐसे जीवन साथी के लिए जिनका जो साथ है ना, वो फेविकॉल से भी ज़्यादा मजबूत है, जो हम कभी नहीं चाहते कि टूटे, जो हम हमेशा चाहते हैं कि साथ उनका बना रहे और वो हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स हमको देते रहे। मैं अपने फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स आए हुए हैं एंड इस वक्त वो हमारा रेडियो शो भी सुन रहे हैं, एंड गेस वॉट, वो मेरी आवाज़ भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि कहाँ, ये रेडियो वाली मधुर आवाज़ नॉर्मल थोड़ी ना होती है। हमारी जो आवाज़ है वो रेडियो पे काफ़ी चेंज हो जाती है, जो कि ऑटोमेटिकली चेंज होती है। इट्स नॉट दैट आई एम मॉड्यूलेटिंग और डूइंग समथिंग फेक, बट ये तो कमाल आप लोगों का भी होता है डैलस, क्योंकि हमें पता होता है कि आप सुन रहे हैं और आपको अच्छा सुनने और अच्छा सुनाई देने के लिए हमें ये जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो मैं बता रही थी कि हमारे जो अंकल आंटी हैं उनको मैं हाथ जोड़कर सबसे पहले तो उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी जी, अंकल जी, आप आए हैं और इस वक्त मेरा रेडियो शो सुन रहे हैं, और जैसा मैंने बताया कि फिल्म एक दूजे के लिए, वैसे मैं जब भी आपको देखती हूँ मुझे लगता है आप लोग हमेशा एक दूजे के लिए हैं, हमेशा एक दूजे के साथ है। आपका साथ ही हमारे लिए ब्लेसिंग है, तो हमेशा आपका साथ बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ ये खूबसूरत सा गाना मैं अंकल जी और आंटी जी को डेडिकेट करती हूँ। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल नंबर फ्रॉम द एरा 80s। एंड याद है ना आपको कि इस वक्त पर जब रोमांस भी होता था ना, तो थोड़ी चुलबुली हरकतें, थोड़ी मस्ती, थोड़ा मजाक और थोड़ा नखरा भी उसमें शामिल होता था।

0: भूल गए
1: जानी मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडलबान
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

Tell us, get ready for an unforgettable in night of music. The one and only Sonu Nigam live in concert, jo ki 26th of September ko hone wala hai, 8:30 PM at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Experience the revolution September 26th. 8:30 PM onwards. Your favorite songs, that iconic voice, all live. Ticket aapko Ticketmaster par mil jayegi. Zyada information ke liye aap call kar sakte hain 855-360-SHOWS. 855-360-SHOWS. Revolution Sonu Nigam live. Exclusive media partner is One Asia Radio. Ek gaane ki request aayi hai. Gaana hai Mere Angne Mein. Tumhara kya kaam hai? Yaar, main to kehti hoon, aapke kaam ke bina, aapke bina, हमारे अंगने में रौनक ही नहीं आती है. यानी कि हमारे फन एशिया रेडियो में रौनक जो होती है वो हमारे सुनने वालों की वजह से ही होती है. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. अगला 20 मिनट एक बार फिर से कहूंगी कि आपके नाम फ्राइडे वाइब के नाम. दिस इज मी आरजे स्वाति गिविंग यू दिस फ्राइडे वाइब ऑन दिस ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म फन एशिया रेडियो.

0: अरे गोद में बैठा लो बच्चे का क्या काम है गोद में बैठा लो.
1: टेकन फ्रॉम द मूवी लावारिस जिसकी आई थी रिक्वेस्ट. अब आपको बता दूं कि वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट लव्ड फूड ब्रांड्स इज नाउ इन फ्रिस्को टेक्सास. फ्रॉम देयर फेमस चना पूरी एंड सैंडविचेस टू डिलीशियस करीज एंड द लेजेंडरी होको cold cocoa, it's all here. 20% student discount with a valid student ID and 20% discount for the employees on lunch packs available Monday through Friday during office hours. So aap zarur visit kijiye Hoco at Preston Road in Frisco or learn more at hoco.us. theek hai ji, you could also win a free plate of aloo tikki chaat by answering a simple question. Ek question aapko puchungi aur aapko ये जो फ्री प्लेट है आलू टिक्की का ये जीतने का मौका मिल जाएगा. अगला जो मैं गाना बजाने जा रही हूँ आपको बताना है कि ये कौन सी फिल्म से लिया गया है.
2: सदा बाहर वीडियोस देखने
1: के. अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे. स्टूडियो का नंबर है 9723555555. यू कैड विन अ फ्री प्लेट ऑफ आलू टिक्की चाट बाय आंसरिंग दिस सिंपल क्वेश्चन दैट ये फिल्म का नाम क्या है जो गाना मैं अगला प्ले कर रही हूँ. आप जा सकते हैं होको एट प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. आप और ज्यादा जानकारी के लिए आप ये विजिट कर सकते हैं होको.us.

0: देखिए, कोई जाने या ना जाने, लेकिन डेलस की जनता हर सवाल का जवाब जानती है. एंड जो मैंने अभी सवाल पूछा था, मुझे उसका जवाब मिल गया है. मैं और भी कॉल्स आ रहे थे जिन्हें एंटरटेन नहीं कर पाई. मैं माफ़ी चाहती हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी हमारा जो विनर है वो चूज़ कर चुकी थी. जो सबसे पहले कॉल आया था उनमें से मैंने विनर को चूज़ कर लिया है और शाहिना जी बनी है हमारी विनर. आपको बता दूँ कि फ़न पिज़्ज़ा की तरफ से आज आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है. वो ये है कि अगर आप भी मेरी तरह ना फूडी हैं, अगर आपको भी मेरी तरह लगता है कि फ्राइडे नाइट लेट नाइट भूख लग जाती है, कितना भी आपने डिनर किया है टाइम पे, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको लेट नाइट कुछ यम्मी लिशियस खाने का मन करता है, कुछ चीज़ी होने का मन करता है, तो फिर आप फन पिज़्ज़ा किचन आज आपके लिए एक मौका दे रहा है. जी हाँ, आपको जब भी ऐसा मन करे आज रात में कितने भी बजे, तो ये याद रखिएगा कि 3 बजे तक, यानी कि सुबह के 3 बजे तक फन पिज़्ज़ा इज़ रेडी टू सर्व यू. आपको पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही है, कुछ चीज़ी कुछ मस्त सा यम्मी डिशेस खाने का मन हो रहा है, तो आज आप चले जाइएगा. फन पिज़्ज़ा किचन खुला रहेगा 3 बजे तक, यानी 3 AM तक वो आपको सर्व करेंगे. सो फ्राइडे नाइट को अगर भूख लगे तो जाइए आप फन पिज़्ज़ा किचन और कह दीजिए कि चले कुछ अच्छा खाते हैं. अब देखिए भाई, मैं तो ऐसी हूँ कि मुझे तो लेट नाइट भूख लगती है, आपको लगती है, तो फन पिज़्ज़ा किचन इज़ योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन. लीजिए अगला गाना, बहुत ही कम समय बचा है अब हमारे पास, लेकिन आज हमने जो नॉस्टैल्जिक 80s के ब्यूटीफुल नंबर्स को एंजॉय किया है, टाइम ट्रेवल किया है, अपने आप को बहुत प्यार से उन मेमोरीज की गलियों पर लेकर गए हैं और उन अपनों को कुछ भूले बिसरे पलों को याद किया है, उसके लिए आप मुझे थैंक यू कह सकते हैं डैलस.
1: दोस्तों, कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रंबा? सांबा? रंबा? सांबा? टेक्विला? टैंगो? चार्ल्सटन? पोल्का? नो?

0: के सब दरवाजे खोल।
1: Let's rock and roll. आपको बता दूं कि आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है जहां पर आप विजिट कर सकते हैं taraenergy.com पर, क्योंकि तारा जो है उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं. अगर आप भी बिजनेस ओनर हैं और किसी स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं, देन ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी, प्राउडली सर्विंग टेक्सास बिजनेसेस सिंस 2002 विद कॉम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स. विजिट कीजिए taraenergy.com या फिर कॉल कीजिए 844-428-2808. डैलस में लेती हूँ आपसे आज के लिए इजाजत. आप सुनते रहिए हमारा ये फन एशिया रेडियो का ये ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन, जो कि आपका ही रेडियो स्टेशन है, आपकी फरमाइशों के लिए चलता है एंड आपको एंटरटेन करना 24/7 हमारा फर्ज बनता है. तो जब आप आज लेट नाइट तक जागेंगे, फन पिज्जा जाना मत भूलिएगा, क्योंकि आज 3 बजे रात तक फन पिज्जा किचन खुला हुआ है. एट द सेम टाइम पैसे की चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि पैसा ये पैसा कैसा ये पैसा. ये लास्ट गाना चलाती हूँ, लेती हूँ आपसे इजाजत. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए एंड मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा. नेक्स्ट फ्राइडे आपसे जुड़ूंगी इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर 8 to 10 PM फ्राइडे वाइब लेकर.

0: Club Phonasia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: आई नी तेरा सूट भी आई नी तेरी साड़ी भी आई नी तेरा लहंगा तेरी ड्रेस ते तेरा कोका डिजाइनर

0: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
1: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
0: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
1: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
2: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.

0: Asia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: तेरी ये बारी सबकी तूने वाट लगवा दी लड़की

0: solution and let the good times roll.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
0: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा

0: करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिर अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स का मिशन जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया।
1: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

0: Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: रुको जरा, सबर करो।
5: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Funny Asia.

solution and let the good times roll.

0: The Heartbeat of Dallas. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: साथी जिंदगी में करते रहते हो लेकिन काम में तुमने आज तक नहीं की आदत नहीं है तुम्हें

0: Shakti Magic 24/7. Only on 104.9 FM.
1: Banjo.

0: बोले नीचे से रे नीचे से।
1: सुन रानी नी ठाट बाट देख किंग दे तू ही जच दी है नाल इस सोने सिंह दे।

Variety is the spice of our station. 104.9 FM.

Don't touch that dial. Keep listening.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
7: हाय दिस इज सैफ अली खान यू आर लिसनिंग टू Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदले वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: तो क्या कह रही थी वो?

0: Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.
1: तुमने दुबई के चक्कर में हमसे बिया किया? हमसे कतई प्यार नहीं था।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

म्यूजिक MG, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़की।

0: कितने आदमी थे?
1: सर का पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
2: मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ।
3: अच्छा सुना सुना?
2: वो मेरी प्रैक्टिस नहीं अभी।
3: अगली बार प्रैक्टिस करके आना और किसी और के लिए मत गाना।

authentic, original, and better than our right.

0: अभी बजा आएगा ना भिड़ो
1: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: आपके सुहाने सफर का साथी फन एशिया रेडियो।
1: हमारे साथ मेवाड़ चलेंगे पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
9: Kaun sa?
8: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है
9: अरे सारे तो सेम है
8: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये देखो ये वाला
9: ओ हाँ ये तो अलग है
10: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
12: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
12: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
11: सच में सब संभालेंगे
12: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 वैनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर
13: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स
13: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स
13: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स
13: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338 दैट्स 817-786-3338
15: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म सुनो सुनो सुनो स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर
16: एनुअल फिजिकल्स प्रिवेंटिव केयर सेम डे अपॉइंटमेंट्स क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस सब एक ही जगह कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259
17: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
18: साल तो कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू डबल हो गया
19: सर अच्छा है लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
18: नहीं
19: बुककीपिंग अपडेटेड है
18: नहीं
19: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया
18: वो भी नहीं
19: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त
10: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो फॉर योर टैक्स प्लानिंग बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 AG FinTax Your growth, our strategy. AG Fintechs led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
20: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
21: Weekend ka plan abhi tak nahi mila. First 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Bollywood Tag Fun Asia. Fun Asia.
1: Ha-oh.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनी शो 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
1: Every home has a story. Let's create yours together.
2: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. First 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye. Lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort Durant. Entertainment, luxury or excitement. Sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: अजी सुनते हो?
8: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
9: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
10: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
11: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
10: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
11: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
10: और एंटरटेनमेंट,
11: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
10: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
11: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
16: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मार्विन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फनीशिया रेडियो पर।

0: क्लास शुरू करें?
1: Don't touch that dial. Keep listening.

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।
1: वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद फन एशिया रेडियो 104.9 FM पर। मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555। अभी 9 से 10 आई एम कवरिंग फॉर संगीता एंड देन 10 टू 12 इज माय रेगुलर जस्ट चिल शो, जहां करेंगे हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। सैटरडे होता है ट्रैवल सेगमेंट और आज मैं ले चलूंगी आपको उन डेस्टिनेशंस पर जहां पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिवाजों से गणपति सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो कहना चाहूंगी गणपति बप्पा मोरिया, मे योर लाइफ बी फिल्ड विद हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी।

0: Well, that was a Siddhi Vinayak Mantra or Aarti sung by none other than Amitabh Bachchan. जी हाँ, जस्ट चिल में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गणपति, और उसी के बारे में और बातें भी बताऊंगी कि कैसे यही सेम फेस्टिवल अलग अलग जगह इंडिया में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है. लेकिन पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगी, क्योंकि होता यही है कि एंटरटेनमेंट तो हमारा चलता रहता है, बट कुछ जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो मिस नहीं होनी चाहिए. तो जैसे मैं आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि कई बार होता है कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ जो है वो आउट ऑफ नेटवर्क है. वेल, फिकर नॉट, बिकॉज आप अफोर्डेबल प्राइमरी केयर यू कैन गेट दैट विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ. इसमें आपको प्राइमरी केयर भी मिलेगा, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड मच मोर. आप कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं इस नंबर पे. द नंबर इज 214-666-6259, और यू कैन विजिट पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम. वेल, दिस प्रोग्राम इज नॉट हेल्थ इंश्योरेंस, सो आप कंफ्यूज ना हो. एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई, एंड ऑल्सो द फ्रिस्को लोकेशन इज नाउ ओपन ऑन सैटरडेज एंड संडेज. तो आप पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर ऑन अ वीकेंड भी जा सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू गणपति सेलिब्रेशन, जैसा मैंने कहा कि सैटरडे हमारा ट्रैवल सेगमेंट होता है, तो आज मैं आपको अलग अलग जगह इंडिया की लेके जा रही हूँ जहाँ गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. सो ट्रस्ट मी, द मोस्टली पीपल जो हैं, व्हेन दे थिंक ऑफ गणपति, दे थिंक ऑफ महाराष्ट्र, राइट? मुंबई एंड पुणे आर फेमस फॉर इनॉर्मस पब्लिक पंडाल्स, स्पेक्टेकुलर आइडल्स, ढोल ताशा, परफॉर्मेंसेस, डांसिंग, बहुत मस्ती, बहुत डिवोशन रहता है. एंड देन इज अ ह्यूज विसर्जन प्रोसेशन ऑल्सो. सो फैमिलीज ब्रिंग बप्पा होम फॉर इंटीमेट सेलिब्रेशन. इट्स लिटरली लाइक जैसे कोई फैमिली मेम्बर घर आता है एंड आप आओ भगत करते हैं. सो मुंबई के जो पंडाल्स हैं, दे आर फेमस एंड दे हैव बिकम लाइक मेजर कल्चरल लैंडमार्क्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल, वाइल स्मॉलर नेबरहुड पंडाल्स जो हैं, दे क्रिएट देयर ओन डेकोरेशंस एंड प्रोग्राम्स. तो जी हाँ, अगर गणपति की बात करें तो मेरे ख्याल आउटसाइड इंडिया लोगों को सबसे पहले मुंबई ही ध्यान आता है.
1: जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की. ई है

0: आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे, ये है बंबई नगरिया तू देख बबुआ, ये है बंबई नगरिया तू देख बबुआ।
1: जी हाँ, बंबई नगरिया देख बबुआ, किशोर कुमार की आवाज एंड डॉन वाज द मूवी। जी हाँ, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गणपति इन जस्ट चिल। तो गणपति फेस्टिवल्स के दौरान एक फ्रेज जो आप बहुत सुनेंगे, दैट इज गणपति बप्पा मोरिया। वेल, ये जो है वो इसलिए है कि आपको हर जगह लोग ये चैंट करते सुनाई देंगे, फ्रॉम द अराइवल ऑफ द आइडल टू द विसर्जन प्रोसेशन, आप ये बहुत सुनेंगे। एंड साथ ही साथ जब फेयरवेल होती है तो लोग कहते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, जैसे पुंचिया वर्षी लौकरा, यानी कि कम बैक सून नेक्स्ट ईयर। सो अगर गणपति बप्पा मौर्या की मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, या यू नो वर्ड बाय वर्ड अगर समझाना चाहूं, तो गणपति इज ऑफ कोर्स अनदर नेम फॉर लॉर्ड गणेशा। बप्पा जो है इज एन अफेक्शनेट मराठी टर्म मीनिंग समथिंग लाइक फादर, राइट, फादरली फिगर, बिलवड फादर, डियर वन। एंड मौर्या, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद मौर्या गोसावी, अ रेवर डिवोटी ऑफ गणेशा, जिनके नाम जो है गणपति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र से बहुत क्लोजली अटैच हैं। सो इन स्पिरिट, गणपति बप्पा मौर्या इज एक प्यार भरा कॉल ऑफ डिवोशन, रफली सेइंग हेल बिलवड गणपति। सो आप ये अक्सर सुनेंगे कि गणपति बप्पा मौर्या पूजा वर्षी लवकरा, बेसिकली he come back soon next year, you know, it's very very sweet phrase and it feels like almost you're calling out to a beloved family member ki aaye bahut acha laga aur ab phir se jaldi aana। So Ganpati Bappa Morya aapko bahut sunai dega।

0: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
1: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: ना सब और प्राइस
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं।
5: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
3: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
2: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
6: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, but chili paneer bao, kahani mein twist.
7: Chicken tikka, purani mohabbat, but burrata chicken tikka, new love.
6: And pistachio lamb chops?
7: Full on flavor ka fusion.
3: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic, now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
2: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
8: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
2: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
8: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
9: It's the time to crack out. It's the time to catch up.
10: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
11: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
12: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
2: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
13: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
2: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलीशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
13: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
12: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
14: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।

All right, and that was a Bavare taken from the movie Luck by Chance. This is Madhulika. Main dungi aapka saath dopahar ke 12 baje tak. Studio ka number 9722355555. And yes, we are celebrating Ganpati in this segment. To Ganpati ke haath mein aapne aksar modak dekha hoga ya laddu dekha hoga. So it's basically represents sweetness and the rewards of विजडम. और अगर खाने पीने की बात हो ही रही है तो मैं आपको तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट के बारे में बताना चाहूँगी. फिर चाहे बटर चिकन हो, बिरयानी हो, पनीर टिक्का या दाल मखनी, इफ़ इट साउंड्स लाइक योर काइंड ऑफ डिनर देन यू नीड टू हेड टू तंदूरी फ्लेम जो कि गार्लैंड में है. एंड एक और रीज़न भी है कि आप तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट जो गार्लैंड में है क्यों जाएँ. वो इसलिए जाएँ कि अब वो एक फ्लेम आर रखते हैं. बेसिकली मंडे थ्रू थर्सडे अगर आप 5 से 8 के बीच में जाएंगे एंड ऑर्डर एनी 2 एंट्रीज यू विल रिसीव 1 कॉम्प्लीमेंट्री एपेटाइजर. जी हाँ, अगर आप मिस कर गए हैं तो मैं फिर से बताऊंगी कि तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट में फ्लेम आर है बेसिकली मंडे थ्रू थर्सडे फ्रॉम 5 to 8 PM. इफ़ यू ऑर्डर एनी 2 एंट्रीज यू रिसीव 1 कॉम्प्लीमेंट्री एपेटाइजर. सो डू विजिट तंदूरी फ्लेम tx.com for more details. That's tandooriflametx.com. And the next one, isme dikhe Tiger Shroff, and that's Jay Ganesha, taken from Ganpat.

मोरे जैसा मैंने कहा, गणपति फेस्टिवल के दौरान आपको ये बहुत सुनने को मिलेगा, एंड दैट इज गणपति बप्पा मोरिया। चलिए अगला गाना प्ले करूं, उसके पहले मैं आपको ड्रीम होम मोर्गेज के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कई बार होता है कि आप बस सपना ही देखते रह जाते हैं। यू जस्ट कीप ड्रीमिंग एंड थिंकिंग कि यार ये सपना कब पूरा होगा, सो यू नेवर नो, योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक। जी हाँ, 1998 से ड्रीम होम मोगे जो है, इन्होंने बहुत सी फैमिलीज नेशन वाइड हेल्प की हैं टू यू नो गेट पर्सनलाइज मोगेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग और फॉर रीफाइनेंसिंग। तो आप ड्रीम होम मोगेज को कॉल करें, द नंबर इज 9722455626, और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com। ड्रीम होम मोगेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन। तो ये जरूर याद रखें, एंड द नंबर वंस अगेन फॉर ड्रीम होम मोगेज इज 9722455626। एंड द नेक्स्ट वन इज टेकन फ्रॉम द न्यू डॉन, जिसमें शाहरुख खान दिखे थे एंड शंकर महादेवन की आवाज़।

सोनू निगम आ रहे हैं जी हाँ आपके लिए. गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. द वन एंड ऑनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट. आप एक्सपीरियंस करें रेवोल्यूशन. सैटरडे सितंबर 26 को शाम 8:30 बजे एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर जो कि एलन में है. तो आपके फेवरेट सॉन्ग्स और वही आइकॉनिक वॉइस ऑल लाइव. टिकट्स आर अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कॉल करें 855-360-SHOWS. रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

Alright, there's a giveaway for you now. Ji haan, Fun Pizza Kitchen ki jo new Mexican inspired pizzas hain, they are a full on flavor fiesta. Ji haan, try the fiesta veggie, phir chahe ho fiery polo loco, ya phir seafood packed, senor, camaron, and so much more. So, aapko simple sa ye question ka jawab dena hai. And you have a chance to win $10 gift card. So, do, you know, tell me. कि आप मुझे बताएं कि बॉलीवुड के कोई भी ऐसे तीन गाने जो गणपति को सेलिब्रेट करते हो. टेल मी एनी थ्री बॉलीवुड सॉन्ग्स सेलिब्रेटिंग गणपति एंड यू कैन विन अ $10 गिफ्ट कार्ड. एंड वेल द नेक्स्ट वन इज टेकन फ्रॉम द मूवी अग्निपथ. Right? So, जिसमें दिखे थे रितिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑन गणेशा. और याद रखें कि फन पिज़्ज़ा किचन का ये जो गिव अवे है वो आप जीतेंगे अगर आप मुझे तीन बॉलीवुड के गाने बताएंगे. विच सॉन्ग्स, यू नो, विच आर द सॉन्ग्स सेलिब्रेटिंग गणपति. सो यस, दिस इज मधुलिका. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर 9722355555. वी आर सेलिब्रेटिंग गणपति टुडे इन माय शो विच इज जस्ट चिल, जहां करते हैं हम, एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल.

Vijay, Master.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
7: ये तारा वो तारा हर तारा.
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
8: वी नीड टू टॉक.
9: अब क्या हुआ?
8: Nothing. It's not you.
9: Oh no.
8: It's the distance.
9: Distance? We live 10 minutes apart.
8: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
4: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
10: Beta, 95% aaye?
11: Haan, mummy.
10: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
12: मेरा?
10: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
12: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: Huzoor, aapko chunna hoga, hum ya ye biryani?
13: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
8: Aakhir kya hai is biryani mein?
13: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
14: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
4: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
14: Barista House, richness of biryani bliss.
15: Sadia.
16: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
17: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
18: तुमसे मिलके दिल का है.
17: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
19: डैलस की धड़कन 104.9 FM, Fun Asia Radio.

वेलकम नमस्कार खुशामदीद फनी शेयर रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। वेल मैं आज सेलिब्रेट कर रही हूँ गणपति आप सभी के साथ, तो स्टूडियो का नंबर रखें याद 972-235-5555। यू नो मे लॉर्ड गणेशा रिमूव एवरी ऑब्स्टिकल फ्रॉम योर पाथ, मे योर लाइफ बी फिल्ड विद हैप्पीनेस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणपति।

जी हाँ, जय गणेश देवा। आज हम गणपति ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको बताऊं कि गणपति जो है सेलिब्रेटेड फॉर डिफरेंट लेंथ्स ऑफ टाइम। कुछ लोग जो हैं, यू नो, वाइल द फेमस मुंबई सेलिब्रेशंस कैन रन फॉर 10 to 11 days, कुछ फैमिलीज जो हैं दे सेलिब्रेट जस्ट फॉर 1.5 day। कुछ लोग 3 दिन रखते हैं, कुछ कुछ लोग 5 दिन। बेसिकली ऑड नंबर्स में गणपति को बुलाया जाता है। सो 1.5 days या 3 days, 5 days, 7 days या इवन 11 days, एंड द फाइनल इमर्शन इज कॉल्ड गणेश विसर्जन। सो ये बड़ा ही प्यारा सा ये फेस्टिवल होता है। गणेश जी जस्ट लाइक अ गेस्ट, जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर आपके घर आते हैं, विराजते हैं, और आप उनको रोज़ भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एटमोसफियर एंड एनवायरमेंट विच बिकम्स इन योर हाउस। पीपल कम एंड विजिट, दर्शन करते हैं, एंड या इट्स अ ब्यूटिफुल सेलिब्रेशन। वी आर सेलिब्रेटिंग गणपति टूडे, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज अ सॉन्ग रिक्वेस्ट टेकन फ्रॉम ABCD। जी हाँ, एनी बडी कैन डांस।

All right, that was a song request taken from A B C D. Anybody can dance. अच्छा, जैसा कि मैंने कहा, जस्ट चिल में आज जो ये हमारा ट्रैवल सेगमेंट है, मैं ले चल रही हूँ आपको इंडिया की अलग अलग जगह कैसे कैसे गणपति सेलिब्रेट होता है. तो पहले मैंने आपको मुंबई और पुणे के बारे में बताया था. अब मैं आपको गोवा ले चलती हूँ. गोवा में चावत के नाम से सेलिब्रेट होता है गणपति. इट्स यहाँ पर क्या होता है कि इट्स अ वेरी स्ट्रांग फैमिली होम कमिंग कैरेक्टर. जो गोवंस हैं लिविंग एल्सवेयर ऑफन रिटर्न टू देयर एंसेस्ट्रल होम्स फॉर दिस फेस्टिवल. द माटोली इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट ट्रेडिशंस. ये बड़ी प्यारी सी एक ट्रेडिशन है. एक नेचुरल कैनपी अबव द श्राइन होती है एंड उसको डेकोरेट किया जाता है विद वट एवर द मानसून सीजन हैज़ प्रोवाइडेड. बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है इस कैनपी को. एंड देन देयर इज दिस स्पेशली अनयूजुअल ट्रेडिशन इन कुंभार रुजुआ. डेकोरेटेड कैनोज आर जॉइंड टुगेदर टू क्रिएट फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स कैरिंग टैबलो अलॉन्ग द कैनाल ड्यूरिंग द संगोद उत्सव. तो गोवा में यही सेम गणपति फेस्टिवल is celebrated in a very beautiful and a very different style, right? That's the beauty ki ek hi festival alag alag jagah alag alag tarike se manaya jata hai. So abhi main baat kar rahi thi Goa ki.

Well, that was taken from what was that name? Well, ये गाना किस मूवी से था मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले ये जरूर बताना चाहूंगी दैट आप सुन रहे हैं जस्ट चिल. मैं हूँ माधुलिका, दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555. जी हाँ, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गणपति. कैसे अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से गणपति मनाया जाता है, तो इस अगले गाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कर्नाटका में कैसे गणपति मनाया जाता है.

अल्लाह वाज टेकन फ्रॉम द मूवी बैंजो. और इसके पहले जैसा कि मैंने कहा था, जो मुझे ध्यान से एकदम उतर गया था कि वो गाना किस मूवी से था, सो दैट वाज फ्रॉम ड्रीम गर्ल. वेल डैलस प्रोफेशनल्स, यू नो, इफ़ यू आर फीलिंग स्टक या फिर आप सोच रहे हैं कि एआई एंड वर्क प्लेस चेंजेस आर लीविंग यू बिहाइंड, राइट, यू आर नॉट एबल टू कैच अप, वेल देन यू नीड टू जॉइन 4-time TEDx स्पीकर्स एंड अवार्ड विनिंग करियर कोचेस शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठा फॉर अ पावरफुल करियर ग्रोथ वर्कशॉप. इस वर्कशॉप में आप जाकर यू विल गेट लॉट्स ऑफ आइडियाज एंड यू नो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. लर्न हाउ टू रीपोजिशन योर वैल्यू, स्ट्रेंथन योर लीडरशिप प्रेजेंस एंड एक्सेलरेट योर करियर विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. वेल ये होगा सितंबर 19th को, यानी कि आज ही हो रहा है. सो रजिस्टर नाउ एट plateful.com/dallas एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर पावरफुल करियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी. जी हाँ, दैट्स plateful.com/dallas एंड दैट्स वॉट यू नीड टू गो एंड अटेंड टूडे. इज अ वर्कशॉप हैपनिंग. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको कर्नाटका के बारे में बताऊंगी कि कैसे गणपति कर्नाटका में सेलिब्रेट होता है. तो इट्स क्लोजली कनेक्टेड विद गौरी हब्बा. गॉडेस गौरी यानी कि पार्वती इज वर्शिप बिफोर गणेशा, भाई गणेश जी की माँ जो है, मेकिंग द सेलिब्रेशन अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ गौरी एंड गणेशा ट्रेडिशंस. यू नो, आपको यहाँ पे जो प्रसाद भी मिलेगा या जो डेकोरेशंस हैं या जो रिचुअल्स हैं वो भी दे आर वेरी डिस्टिंक्टिव, वेरी डिस्टिंक्टिव एंड लोकल टू दिस प्लेस रादर देन ओनली द जायंट पब्लिक पंडाल स्टाइल विच यू एसोसिएट विद मुंबई. तो आपको यहाँ पर गौरी एंड गणेश की पूजा होती हुई दिखेगी, दैट्स इन कर्नाटका.

0: कहाँ मिलता है आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर? ये भक्ति करनी है ना
1: तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

0: That was Kailash Kher's Badam Bam. What a beautiful song, है ना? मैंने पूछा था आपसे एक सवाल कि क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गणपति, तो आप मुझे कॉल करके बताएं कि गणपति के मॉम और डैड का नाम क्या है. एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hi.
0: What's your name?
1: The answer, my name is Meenakshi and the answer is Shiv and Parvati.
0: Awesome, Meenakshi. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. And Fusion Republic Indian Kitchen and Bar से ये giveaway आपने जीत लिया. Do you celebrate Ganpati?
1: I do the like fasting on Tuesday, every Tuesday for Ganpati.
0: अरे वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, that's so nice. Wonderful. So congratulations, आपने जीत लिया ये giveaway. I'm going to take you off air and take some details from you while I'm going to play another Ganpati song for our listeners. Thank you so much for participating.
1: Thank you so much.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navnita Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
3: Call Navnita Khemka at 347-449-4242.
4: Phone uthaiye, number dawaiye, 347-449-4242.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
7: Har khushi mein aapke saath, Manyavar Mohe. Traditional celebration wear for men, women and children. Crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe. Located on Regent Boulevard off 635 East in Irving.
8: Aaj hi sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
9: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
8: सच में सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Sadia.
14: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
15: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
16: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
17: तुमसे मिलके दिल का है।
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
16: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
18: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।

That was taken from Baji Rao Mastani, and that was Pinga. And before I play the next song, I want to talk about the Flavor Lounge, because Flavor Lounge in Frisco is now serving an all-new weekend lunch buffet, jahan par aapko milengi delicious dishes, live counters, chef ke specials, and fresh flavors, all for just $24.99 per person. So join them Saturday and Sunday 12 to 3 p.m. at 5855 Preston Road, Frisco. भाई होता है ना वीकेंड पर होता है कि यार घर में खाना नहीं बनाना है, कहीं जाते हैं कुछ अच्छा सा खाते हैं. तो है ये सॉल्यूशन आपके लिए, एंड दैट इज द फ्लेवर लाउंज. गुड फूड, ग्रेट मेमोरीज. सो मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट दैट दे हैव दिस लंच बफे ओवर द वीकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम 12 टू 3 p.m.

Well, that was taken from जुड़वा 2. एंड बिफोर आई प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग, मैं आपको ड्रीम होम मोगेज के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो ये ड्रीम होम है इज क्लोजर देन यू थिंक. ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ वो एक सपना है, वो सपना साकार हो सकता है विद ड्रीम होम मोगेज. क्योंकि 1998 से ड्रीम होम मोगेज ने बहुत सी फैमिलीज को नेशन वाइड हेल्प किया है विद पर्सनलाइज मोगेज सॉल्यूशंस, फिर चाहे वो बाइंग न्यू हाउस हो या रीफाइनेंसिंग योर हाउस. सो आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 9722455626, या फिर विजिट करें dreamhomemortgage.com, एज ड्रीम होम मोगेज विल मेक योर ड्रीम होम हैपन. सो यस, याद रखें, द नंबर वंस अगेन इज 9722455626.

0: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
1: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: वेट, इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ अगस्त, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं हीरो।
5: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
6: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुर्राटा चिकन टिक्का न्यू लव।
5: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
6: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
7: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
8: Beta, 95% aaye?
9: Haan, mummy.
8: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
10: मेरा?
8: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
10: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
11: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
12: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवनस आस्किंग लंच में क्या है?
11: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
18: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

अल्लाह वाज टेकन फ्रॉम द मूवी देवदास। अच्छा, अब फेस्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, गर्मी भी एकदम पीक पे है, चेंज हो रहा है वेदर, तो यू नो तबीयत का थोड़ा रखें ध्यान, क्योंकि अब इतनी फेस्टिविटीज़ हैं, इतनी सेलिब्रेशंस होंगी, तो भाई अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक रखें। एंड इससे मुझे याद आता है आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बताने का, क्योंकि कई बार होता है कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ आपके आउट ऑफ नेटवर्क है, तो अब भी, जी हाँ, उसके बावजूद यू कैन गेट अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ। एंड दिस विल इंक्लूड आपका प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ हो और भी बहुत कुछ। तो आप प्राइमरी हेल्थ, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर को कॉल करें, द नंबर इज 214-666-6259, या फिर आप विजिट करें पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम, एज यू नो देयर यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन इफ़ यू वॉन्ट। ये प्रोग्राम कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम नहीं है एंड एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई। सो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर को ज़रूर रखें याद, बिकॉज यू नीड टू बी एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन टू इन्जॉय ऑल द फेस्टिविटीज़ एंड ऑल द सेलिब्रेशंस।

taken from the movie Ram Leela. That was Nagara Sang Dhol Baje. अब नगाड़ा संग ढोल तो बाजे, बट आपको पता है ये गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है? वेल, इसके पीछे भी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, और कहानी कुछ ऐसी है कि एज पर द हिंदू ट्रेडिशन, गणेश एंड हिज ब्रदर कार्तिकेय, उनको एक चैलेंज दिया गया था कि दुनिया की पूरी परिक्रमा करके जो सबसे पहले आएगा उसी की पूजा जो है सबसे पहले की जाएगी. तो कार्तिकेय जो है, ही सेट ऑफ ऑन हिज पीकॉक, जबकि जो गणेश जी थे उन्होंने सिंपली ही जस्ट वॉक्ड अराउंड हिज पेरेंट्स शिव एंड पार्वती एंड सेड. उन्होंने गणेश जी ने पार्वती और शिव जी की परिक्रमा की और कहा कि फॉर मी माई पेरेंट्स आर द वर्ल्ड, एंड इज़न दैट सो ट्रू? हमारे पेरेंट्स ही तो हमारी दुनिया है, हमारी पूरी दुनिया. एंड हिज विजडम वन हिम द कॉन्टेस्ट. जी हाँ, इसी स्टोरी से ये माना जाता है कि इट्स वन ऑफ द रीजन कि गणेशा बिकेम एसोसिएटेड विद विजडम, विद इंटेलिजेंस एंड बीइंग ऑनर्ड फर्स्ट. तो इसीलिए गणपति बप्पा को सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है. एंड दैट्स यू नो, when they celebrate Ganpati Bappa, they are not just celebrating a deity, they are symbolically welcoming wisdom, auspicious beginnings and the removal of obstacles and positive energy into their homes and lives.

Well, Ganesh ji ki agar baat karein, right? If you can think of Ganesha's form almost like a visual life lesson, और वो इसलिए कि अगर उनके बड़े कान देखे जाएं तो they are, they symbolize listening, कि ध्यान से सुने. छोटी छोटी उनकी आंखें symbolizes कि focus रखें. Big head symbolizes to think wisely. जो उनकी trunk है, जो उनकी सूंड है, it's there symbolizing adaptation. एक दंत कहा जाता है, राइट? वन टास्क, बेसिकली लेट गो ऑफ वॉट इज नॉट नीडेड एंड एक्सेप्ट द इम्परफेक्शन. बिग बेली, एक्सेप्ट एंड डाइजेस्ट लाइव्स एक्सपीरियंसेस. उनकी जो चार बाहें हैं, फोर आर्म्स, दे एक्ट, यू नो, दे आर सिम्बलाइजिंग दैट यू एक्ट विद पर्पस. एंड जो उनकी सवारी है, मूषक यानी कि माउस, इट बेसिकली सिम्बलाइजेज दैट यू नीड टू कीप योर डिजायर्स अंडर कंट्रोल. And that's a part of what makes Ganpati so interesting. Unki jo physical appearance hai is not just simply decorative. His unusual form is meant to communicate ideas about how to live. So wishing you all a very, very happy Ganpati. And yes, it's always fun talking to you all and playing some melodious songs along the way. It's time for me to say bye-bye, but aap kahin jaiyega nahin. Do stay tuned in to 104.9 FM Fun Asia Radio, as yahan hamare shows jo hain aapko entertain karte rahenge. Well, main milungi aapko kal subha 10 baje in Just Chill, jahan karenge hum, as the name suggests, Just Chill. So wishing you a blessed Ganpati filled with new hope, beautiful beginnings and endless success. This is Madhulika signing off.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
5: अरे सारे तो सेम है.
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
5: ओ हाँ, ये तो अलग है.
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
8: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
9: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
10: सुनो सुनो सुनो सारे मैकनी वाले, सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
11: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
12: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: सादिया. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
15: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
16: तुमसे मिलके दिल का है.
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
15: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

दिस इज KZMB 104.9 FM फनीशा रेडियो पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जी दोस्तों, आपका और हमारा ये म्यूजिकल साथ होता है हर शनिवार की दोपहर 12 से 3 के बीच में एंड ऑन संडेज 12 से 2 के बीच में। आज भी हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे कुछ थीम बेस्ड गाने टिल 2 PM, राइट आफ्टर दैट इट विल बी अ कम्युनिटी राउंड अप। 2 बजे तक आज कुछ बातें होगी कलाकार के जन्मदिन को। आई नो पिछले हफ्ते भी हमने किसी कलाकार को भी सेलिब्रेट किया था, लेकिन क्या करें जब बहुत सारे बर्थडेज हो जाए उनको याद करना ही होता है। तो आज की हमारी कौन है कलाकार बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। सुना आपने मधुलिका को टिल नोन एंड नाउ इट इज मी टिल 3 PM 104.9 FM फन एशिया रेडियो। और आज की जो हमारी कलाकार है जो आप पिछले कितने साल से आई थिंक मोर देन 20 ईयर्स उनको आपने बड़े पर्दे पर देखा है, तो कौन है वो कलाकार बताएंगे मुझे आप ये पहला गीत सुनकर। और ये एक्ट्रेस है जी बिल्कुल, एंड अक्सर अमूमन हम ऐसी कोशिश करते हैं कि जो पहला गीत हो जिससे आपको पहचान हो वो इतनी उनकी जानी पहचानी फिल्म ना हो ताकि आप फौरन पहचान ना पाए, थोड़ी सी कठिनाई तो हो ज़िंदगी में, है ना। तो चलिए सुनते ये पहला गीत ऑन 104.9 FM फनीशिया।

आफ़ेद साहब, रीमा, लक्ष्मी, पूजा और भी तीन चार नाम जो मैं नहीं ले पाई जल्दी जल्दी में, सारे हमारे लिसनर्स ने हमें सही जवाब दे दिया। जी बिल्कुल, आज की हमारी जो अदाकारा है जिनके जन्मदिन को मना रहे और जो जन्मदिन था उनका उनका है, अभी हुआ नहीं है जी हाँ, लेकिन क्योंकि हमारी मुलाकात होती है सिर्फ वीकेंड्स में, हम आज मना रहे हैं उनका जन्मदिन, एंड दैट इज़ ऑन 21st of September। 1980 में जन्मी हुई 21st of September, एंड दैट इज़ करीना कपूर का जन्मदिन मनाएंगे हम आज यहाँ पर उनके कुछ बहुत ही बेहतरीन गानों के साथ, उनकी ज़िंदगी की बातों के साथ, उनके फिल्मी करियर के साथ। करीना कपूर के लिए क्या कहा जाए, जहाँ पर वो कभी पू बनी, कभी बहुत ही उनके कमर्शियल, टिपिकल कमर्शियल रोल्स रहे, कभी उन्होंने गीत बनकर बहुत ही संजीदा भी अभिनय किया। सो शी हैज़ बीन अ वर्सेटाइल, एंड ऑफ़ कोर्स स्टाइल आइकन तो है ही, लाखों दिलों की धड़कन भी है। तो वहीं कुछ चुलबुली सी करीना कपूर खान, कभी बहुत ही सीरियस रोल्स वाली करीना कपूर खान की करेंगे हम बातें यहाँ पे ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। कुछ सवाल भी होंगे बिल्कुल आपको पूछने के लिए, कुछ आपसे भी हम जानकारी लेंगे भाई, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितने बड़े फैन हैं करीना कपूर के।

बॉडीगार्ड फिल्म से लिया गया था ये गीत, सलमान खान के साथ फिल्म में आ गया था, करीना कपूर खान की बातें हो रही है आज। 21st ऑफ सितंबर है उनका जन्मदिन, हम मना रहे हैं आज। चलिए ये गाना सुनते हैं एक उनका अगला, एंड उसके बाद मैं आपको एक सवाल पूछूंगी। जी बिल्कुल, आपसे कुछ जानकारी लूंगी, लेकिन सुनते ये बहुत ही खूबसूरत गीत रेफ्यूजी फिल्म से लिया हुआ, जो उनकी पहली फिल्म है। 104.9 FM फनीशिया पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ।

0: रेफ्यूजी से सुना आपने ये गीत जहाँ पर उनकी एंट्री हुई थी अभिषेक बच्चन के साथ। तो चलिए अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये उनकी पहली फिल्म नहीं हो भी सकती थी, क्योंकि उनकी पहली फिल्म कुछ और बातें चल रही थी, कुछ और प्लानिंग भी थी, जहाँ पर उन्होंने कुछ दिनों की नहीं लेकिन कुछ महीनों तक शूटिंग भी कर ली थी, एंड दैट कुड हैव बीन हर फर्स्ट फिल्म, लेकिन नहीं हुआ ऐसा और बन गई ये फिल्म उनकी पहली। सो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि वो कौन सी फिल्म थी जो उनकी पहली फिल्म बन सकती थी लेकिन बनी नहीं, क्योंकि उन्होंने ले ली एग्जिट। तो बताएंगे मुझे आप यहाँ पे 104.9 FM फनीशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। आज करीना कपूर खास की हम कुछ बातें कर रहे हैं, इस अदाकारा जिन्होंने कुछ सीरियस रोल्स भी हमें दिए हैं, कुछ वेरी टिपिकल कमर्शियल रोल्स भी दिए हैं, एंड कुछ फ्लॉप फिल्म्स के साथ हिट फिल्म्स भी दी है। तो सुनते हैं कुछ और भी उनकी बातें और भी गाने, और आप मुझे बताएंगे कि ऐसी कौन सी फिल्म थी जो उनकी पहली फिल्म बन सकती थी। कुछ कॉल्स लूंगी मैं ऑन एयर, लेकिन आपके रेडियो की आवाज बिल्कुल कम, एंड बताइए क्या है आपका जवाब। हेलो पनीश, आर यू लाइव ऑन एयर?
1: सो द फर्स्ट हर फर्स्ट सॉन्ग वाज कल हो ना हो।
0: कल हो ना हो वो उनकी पहली फिल्म बन सकती थी। ओके चलिए बताइए आपकी क्या राय है, कौन सी फिल्म बन सकती थी उनकी पहली?
2: कहो ना प्यार है।
0: कहो ना प्यार है, ओके। और आपका नाम क्या है?
2: नमन।
0: नमन जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, और बी ऑन होल्ड, थैंक यू सो मच। सो कहो ना प्यार है कि कुछ बातें करेंगे लेकिन कमर्शियल ब्रेक के बाद, लेकिन तब तक सुनते हैं ये गीत।

0: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender. It's the time to clock out.
1: It's the time to catch up. And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

इस बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत आप सभी का 104.9 FM फनी एशिया रेडियो। मैं हूं नीलम आपके साथ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम। जी हाँ, 12 से 3 होता है साथ आपका और हमारा वीकेंड्स में, सैटरडेज संडेज इट इज टिल 2 PM। तो कुछ बातें होगी आज करीना कपूर की। 21 सितंबर है उनका जन्मदिन, लेकिन हम मना रहे आज यहाँ पर आप सभी के साथ। चलिए पेज थ्री इटरी को याद कर लेते हैं, क्योंकि लंच टाइम बस होने ही जा रहा है, हो गया आपके लिए, बहुत लोगों ने ऑलरेडी लंच के प्लान बना लिए हैं। तो पेज थ्री इटरी ज़रूर जाएगा, जहां पर आपके लिए इंडियन स्ट्रीट फूड भी है, कुछ ब्रंच की भी बातें हैं, लंच की भी बातें हैं, डिनर की भी बात है, डेट नाइट पे भी अगर आपको जाना है, किसी दोस्त को मिलना है, एक ही बात एंड दैट इज़ पेज थ्री इटरी एट हब 121। पेज थ्री इटरी .com इज़ द वेबसाइट। वंस अगेन द वेबसाइट इज़ पेज थ्री इटरी .com।

किधर जानू ना जी, बिल्कुल 20 सालों से फिल्मी करियर में करीना कपूर खान की रही है जर्नी। और उनकी पहली फिल्म के लिए मैंने सवाल पूछा था कि कौन सी उनकी पहली फिल्म हो सकती थी। वी ऑल नो कि रेफ्यूजी फिल्म उनकी पहली थी, लेकिन वो नहीं, एक्चुअली उनकी पहली फिल्म प्लान नहीं थी। बहुत और भी ऑफलाइन मैंने कॉल्स लिए, इट इज़ रेफ्यूजी नहीं है, लेकिन इट वॉज कहो ना प्यार है। सो करीना कपूर और ऋतिक रोशन को दोनों को साथ में लॉन्च करने की प्लानिंग हो चुकी थी। और ऋतिक रोशन के जो पापा है राकेश रोशन की, ये प्लानिंग थी कि भाई ऋतिक के सामने तो जाएगी करीना ही, क्योंकि करीना और ऋतिक की पैर बहुत अच्छी दिखती थी। एंड फॉर करीना कपूर ऑल्सो दे वर लुकिंग फॉर अ गुड लॉन्च प्लेटफॉर्म, कि कहाँ पे कौन से डायरेक्टर के साथ कौन से प्लेटफॉर्म के साथ उन्हें लॉन्च किया जाए। वॉट कैन बी बेटर देन ऋतिक रोशन, राइट? तो दोनों ने शूटिंग की शुरुआत भी कर ली थी। लेकिन जो बबीता कपूर थी, जो उनकी मम्मी थी, उनको लग रहा था कि भाई ये जो फोकस है ना, ज़्यादा अटेंशन जो है मेरी बेटी को नहीं, ऋतिक रोशन को मिल रहा है, क्योंकि ये राकेश रोशन की फिल्म है तो ऑब्वियसली वो अपने बेटे को ही ज़्यादा हाईलाइट करेगी। जो उनकी जितनी भी फ्रेम्स है, जितनी भी उनकी शूटिंग की बातें हो रही थी, जितनी भी कहानी में जो एलिमेंट थे, जितनी कहानी में अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, दैट इज़ ऑल्सो फॉर ऋतिक रोशन। मेरी बेटी का तो कुछ है ही नहीं। बस फिर क्या था, मम्मी गई बिगड़, और मम्मी बिगड़ गई तो बेटी ने छोड़ दी फिल्म। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि करीना कपूर ने फिल्मों में जब एंट्री की थी, शी वॉज नॉट मोर देन 19 और 20, और मम्मी इसका राज बहुत चलता है बॉलीवुड में। तो मम्मी ने कह दिया कि बेटी ये फिल्म आपके लिए ठीक है नहीं, हम कोई एक और फिल्म कर लेंगे जिसमें आप पे ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा अटेंशन दी जाए। बस छोटी फिल्म और कहो ना प्यार में आ गए अमीषा पटेल, और उसके बदले रेफ्यूजी फिल्म कर ली करीना कपूर ने। चलिए एक दो गाने और सुन लेते हैं, और बाद में ऋतिक रोशन की चूँकि बात निकली है, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, लेकिन कुछ एक दो गाने और सुन ले उसके बाद।

बहुत ज़्यादा जब इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं किसी भी गाने में, एंड दिस डेज यू नो देर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इतनी सारी आर्टिफिशियल एआई की यू नो मदद लगती है, तब किसी गाने में जब आप वेरी क्लियरली यू आर लिसनिंग टू अ फ्लूट और अ तबला, एंड यू नो थ्रू आउट दिस सॉन्ग तबले की आवाज़ जो थी इतनी क्लियरली सुनाई देती है, एंड इफ़ यू आर इन टू म्यूज़िक का आप नहीं भी है, गाते नहीं भी है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि कितनी अच्छी तरह से तबले और फ्लूट का इस्तेमाल किया गया है। अनु मलिक साहब, जी हाँ, वो है संगीतकार इस गाने के। और अलका याग्निक के साथ सोनू निगम की आपने आवाज़ सुनी, और वहीं सोनू निगम को आप लाइव सुन सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज़ सितंबर 26 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास। तो ज़रूर टिकट लीजिएगा, आपके बहुत ही पसंद नाइन्टीज के गाने हो या बियॉन्ड 90, दैट इज़ सोनू निगम द आइकॉनिक वॉइस लाइव आपके लिए होगे 855-360 शोज, दैट इज अ टिकट के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। सोनू निगम की तो चलिए बातें हो रही नहीं है, बातें हो रही है करीना कपूर जी की, लेकिन सोनू निगम जी आ रहे हैं यहाँ पर, उनकी आवाज़ सुनी तो हमने आपको कुछ याद दिला दिया। करीना कपूर के लिए मैं बता रही थी कि रेफ्यूजी फिल्म से बिल्कुल उन्होंने अपना डेब्यू तो किया था, कहीं ना कहीं कहो ना प्यार है छोड़ने के बाद उनको भी शायद रिग्रेट हुआ होगा, राइट? और कभी भी उन्होंने इंटरव्यू में ये बात जाहिर नहीं की, लेकिन मुझे अक्सर लगता था कि अभिषेक बच्चन से ज़्यादा उनकी जो पेयरिंग है दैट लुक्स मच बेटर विद ऋतिक रोशन कम्पेयर टू अभिषेक बच्चन। सबकी अलग अलग राय होती है, हालांकि उन्होंने इतनी सारी फिल्म साथ में नहीं की है। करीना कपूर और अभिषेक बच्चन ने एक फिल्म की थी, लेकिन मैं ऋतिक रोशन की बात कर रही हूँ कि ऋतिक रोशन के साथ करीना कपूर की इतनी सारी फिल्म नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी, बिकॉज दे लुक ग्रेट टुगेदर। आप बताएंगे मुझे, जी बिल्कुल, आप मुझे बताएंगे कि कितनी फिल्म्स आपको याद आ रही है जहाँ पर दोनों ने साथ में काम किया था। 104.9 FM पनेशिया पे मैं हूँ नीलम, और सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि करीना कपूर के साथ ऋतिक रोशन साथ में कब नजर आए थे, एंड कुछ गाने कुछ बातें आपके ढेर सारे कॉल्स और कुछ प्यार के साथ। ये शो रहेगा आप ही के साथ टिल 3 PM, एंड द क्वेश्चन इज करीना कपूर विद ऋतिक रोशन कितनी फिल्मों में।

0: आप जब भी ऑन एयर आइएगा, आपकी आवाज रेडियो की काम, आपकी बुलंद लेकिन रेडियो की बिल्कुल काम. एंड फनीशा, योर लाइव ऑन एयर.
1: हेलो नीलम जी.
0: हेलो सर, क्या है आपका नाम?
1: मेरा नाम पंकज है.
0: पंकज साहब, बताइए, आप करीना कपूर के फैन हैं? बड़े, छोटे, मीडियम साइज?
1: नहीं, कोई बड़ा फैन तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जिस फिल्म में उसने काम, उन्होंने काम किया, ऋतिक रोशन का डायरेक्टर का फैन रहा हूँ.
0: अच्छा,
1: सुभाष घई का.
0: हाँ, सुभाष घई, यस यस, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी वो. एंड जैकी श्रॉफ का भी काम अच्छा था, रति अग्नित्री का छोटा सा काम था, बट वेरी वेरी गुड फिल्म. तो उसके अलावा आपको कौन सी फिल्म याद आ रही है?
1: उसके अलावा तो मुझे कोई खास याद नहीं आ रही है. फिल्म एक याद आ रही है.
0: अच्छा,
1: ऋतिक रोशन के साथ इनकी है.
0: Yes.
1: और दूसरी कोई याद नहीं आ रही.
0: कोई बात नहीं पंकज साहब, हम इसके लिए तो बैठे यहाँ पे. हम आपको बता देंगे.
1: याद दिलाइए.
0: यस सर, आई विल. थैंक यू जी, थैंक यू.

मैं प्रेम की दीवानी हूँ जी, ये मीरा बाई का भजन नहीं है। मीरा बाई के भजन के भी वही बोल है बिल्कुल, लेकिन ये फिल्म का नाम है। एंड करीना कपूर के साथ इस फिल्म में ऋतिक रोशन भी थे एंड अभिषेक बच्चन भी थे। डू यू रिमेम्बर देर वॉज अ फिल्म इन 80s, चिच्चोर करके एक फिल्म आई थी, एंड बड़जात्या फैमिली की वो फिल्म थी। तो बड़जात्या परिवार ने अक्सर अपनी ही फिल्मों की, पुरानी फिल्म को लेकर नई फिल्मों, एंड यू नो दैट्स अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर, पूरे 2 घंटे में कर सकती हूँ उस सेगमेंट पे। खैर, सो ये उनकी चिच्चोर फिल्म की पूरी रीमेक थी, जहाँ पर अमोल पालेकर, जरीना वहाब एंड आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर विजेंद्र घाटके, यस आई थिंक दैट इज द एक्टर्स नेम, विजेंद्र घाटके वॉज द एक्टर, द थर्ड कैरेक्टर। सो विजेंद्र घाटके का रोल निभाया था अभिषेक बच्चन ने, एंड अमोल पालेकर का रोल निभाया था ऋतिक रोशन ने, और करीना कपूर बनी थी जरीना वहाब। वो फिल्म हालांकि इतनी सिंपल बैकग्राउंड में बनी थी, छोटा सा गांव, यशोदा साहब की आवाज़ में ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, फिल्म बहुत चली थी, राइट, बड़जात्या की फिल्म थी वो, राजश्री प्रोडक्शंस दैट इज़। लेकिन यही फिल्म में इसी कहानी को लेकर, द सेम स्क्रिप्ट, कि जहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है कैरेक्टर्स के लिए, शादी की बात चल रही है वगैरह वगैरह, वही कहानी, वही प्रोडक्शन बैनर वही था, इट वॉज अ बड़जात्या बैनर, लेकिन फिर भी फिल्म नहीं चली, बिल्कुल नहीं चली। हालांकि तीन जो कलाकार थे, तीनों कलाकार एक ऐसे उभरते कलाकार, दिस वॉज आई थिंक अर्ली 2000 की बात है, अभिषेक बच्चन थे, करीना कपूर थी, ऋतिक रोशन थे, लेकिन फिर भी लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आई। सो समटाइम इट इज़ लाइक यू नो कि वही स्क्रिप्ट हो, लेकिन अगर नए पैकेज में दे दी फिर भी लोग पसंद नहीं करते, इफ़ समवेयर सम हाउ इट डजेंट क्लिक विद द ऑडियंस, कि ऋतिक रोशन क्लिक नहीं हो रहे थे, करीना कपूर शायद क्लिक नहीं हो रही थी, और कहानी इन जनरल क्लिक नहीं हो रही थी। सो वेल दैट इज़ प्रेम की दीवानी हो, लेकिन उसके अलावा मुझसे दोस्ती करोगे, इफ़ यू रिमेंबर, यशराज की वो फिल्म थी जिसमें रानी मुखर्जी थी और करीना कपूर भी थी, सो दैट ऑल्सो वेयर देवर टुगेदर, नॉट एज अ पेयर बट फिर भी साथ में थे, कभी खुशी कभी गम में भी दोनों साथ में थे, एंड द सॉन्ग विच यू जस्ट हर्ड, मैं प्रेम की दीवानी हूँ।

And welcome back. This is KZMP 104.9 FM Phoenicia Radio. Shukriya ada karna chahti hu AG Fintex ka. This part of our show is brought to you by AG Fintex. 469-942-9888 or you can visit agfintex.com. Once again, that is agfintex.com. Trusted and bahut hi efficient, reliable. agfintex.com. अगर आपने अभी अभी रेडियो ट्यून इन किया है सो वेल मैं बातें कर रही हूँ आज करीना कपूर खान की क्योंकि उनका जन्मदिन है 21st of September. आई नो इट इज़ 19th टुडे लेकिन क्या करें भाई हम आपसे सिर्फ सैटरडे और संडे ही मिलते हैं हर रोज़ मिलते नहीं ना और सैटरडेज की हुई हमारी बातें होती है जहाँ थीम बेस्ड गाने आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ तो आज क्या थीम है उनका जन्मदिन और इसीलिए हम उनके ही गाने कुछ आपके लिए लाए हैं कुछ बातें होती रहेंगी उनके गाने भी आते रहेंगे और कमर्शियल ब्रेक में जाने से पहले ऋतिक रोशन के साथ उनकी पेयरिंग की बात कर रही थी कि जहां पर उन्होंने यादें तो एक फिल्म है ही मैं प्रेम की दीवानी हूं मैं भी उन्होंने साथ में काम किया था कभी खुशी कभी गम में भी उन्होंने साथ में काम किया था मुझसे दोस्ती करोगी एक फिल्म थी जहां रानी मुखर्जी भी उनके साथ थी जहां पर वो साथ में थे लेकिन आई डोंट थिंक कि वो दो तीन साल लाइक आई थिंक दैट वॉज अराउंड 2 or 3 years का एक था उनका स्पेन जहाँ पर उनकी बहुत सारी साथ में बैक टू बैक फिल्म्स आती थी लेकिन उसके बाद कोई भी फिल्म उन्होंने साथ में की हो उसकी क्या वजह रही वो तो ऋतिक हमें बता सकते हैं या फिर करीना बता सकती है खैर चलते हैं अगले गाने की तरफ यादें फिल्म से लिया हुआ है ये गीत और उसके बाद कुछ और बातें कुछ और गाने सफ़ी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस हमारे एक ऐसे क्यूट से प्यारे से लिसनर है सफ़ी जो हमारे हर एक शो को बहुत ही प्यार से चाव से सुनते भी है कॉल भी करते हैं

2000 में रेफ्यूजी से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा अभिनय बच्चन के अभिषेक बच्चन के साथ और अभिनय बच्चन अभिषेक बच्चन के साथ उन्होंने ये फिल्म की, कई अलग अलग फिल्म्स की, राइट. एंड इन द बिगिनिंग एज आई सेड शी डिड वेरी वेरी टिपिकल कमर्शियल फिल्म, जैसे कि कभी खुशी कभी गम में वो पू बनी, एंड बहुत ही उनके सीधे साधे रोल्स से, इफ़ यू पुट इट दैट वे, कि जहाँ पर उनकी कुछ एक्टिंग में वो कुछ अपनी कला, वो जितनी भी उनके कैलिबर थी वो दिखा नहीं पा रही थी. लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि अगर इंडस्ट्री में मुझे कुछ करना है तो आई विल हैव टू शो माय कैलिबर इन अ डिफरेंट शेड्स. चाहे वो चमेली की आपने बात कर ली हो, जब वी मेट, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ हर बेस्ट फिल्म्स जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया था. ओमकारा में भी वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी, एंड वेरी सिंपल सिंपल रोल था. सो दैट वे यू नो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग रंग अपने करियर में देखे और हमें दिखाए. ऑन दैट नोट अगला गीत मैं आपको सुनवाऊँ, उससे पहले ये पूछना चाहूँगी कि जब मैंने अभिनय की विरासत की बात की, ऑफकोर्स कपूर फैमिली की है वो तो हम जानती है, लेकिन और कितने आप उनको रिलेटिव्स या कितने कितने इंडस्ट्री से लोग से वो जुड़ी हुई है, नॉट बाय ब्लड नेसेसरीली, जैसे कि उनके पतिदेव ऑफकोर्स आप जानते ही है, तो आप मुझे बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कनेक्शन आप बता सकते हैं कि करीना कपूर खान से जुड़े हुए हैं, कह सकते कि भाई हाँ वो हमारे परिवार की है. तो बताएंगे मुझे आप यहाँ 104.9 FM फन एशिया रेडियो कि कपूर परिवार तो है ही, पृथ्वीराज कपूर से लेके, राज कपूर से लेके, उनके पापा, उनकी मम्मी, लेकिन उसके अलावा भी और भी उनके रिलेशंस एंड कनेक्शंस इन बॉलीवुड. और 104.9 FM मैं हूँ नीलम आपके साथ.

तलाश फिल्म से सुना आपने ये गीत, जिया लागे ना मोरा तुम बिन मोरा। कानून की पढ़ाई यानी कि लॉ की कुछ स्टडी स्टार्ट भी कर ली थी करीना कपूर ने, लेकिन भाई उनके खून में जो विरासत जो थी उनकी, वो तो अभिनय की थी, एक्टिंग की ही थी। एक्टिंग में तो उन्हें आना ही था ना, नो मैटर हाउ मच शी वॉन्टेड टू स्टडी, लेकिन आखिरकार एंड ऑफ द डे शी वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, जो बन गई।

फिदा फिल्म से सुना आपने ये गीत, और सवाल मैं पूछ रही थी और बहुत सारे आपके कॉल्स भी ले रही थी ऑन एयर ऑफ एयर एक्चुअली, और सवाल फिर से मैं दोहरा रही हूँ। मैंने सवाल पूछा था कि करीना कपूर पृथ्वीराज कपूर साहब के परिवार से है, वो हम जानते ही है, उनके बहुत बड़े परिवार का उनका कपूर परिवार कौन नहीं जानता जिसमें राज कपूर भी है, ऋषि कपूर, शशि कपूर और रणधीर कपूर उनके पापा, बबीता उनकी मम्मी, लेकिन उसके अलावा भी उनके और भी परिवार के लोग हैं जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बताएंगे मुझे आप, अगर आप जानते हैं कि कौन कौन और भी कलाकार है, और भी उनके बॉलीवुड से जुड़े हुए कलाकार हैं जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 104.9 FM फनीशा रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ टिल 2 PM ये सेगमेंट, एंड राइट आफ्टर 2 PM वी विल हैव अ कम्युनिटी राउंड अप। बहुत कुछ बाकी है, उनके गाने अभी बाकी है, उनकी बातें बाकी है, सवाल जो है वो आप मुझे बताएंगे उसके लिए जवाब कि और कौन है कलाकार जो है उनसे जुड़े हुए इन इंडस्ट्री। ऑन 104.9 FM फनीशा मैं हूँ नीलम आपके साथ एवरी वीकेंड ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो।

0: ओमकारा से सुना आपने ये गीत, और सवाल मैं पूछ रही थी, जवाब आप दे रहे थे मुझे। और सवाल ये था कि भाई, इंडस्ट्री में परिवार पूरी तो जानते ही है कि राज कपूर परिवार से जुड़ी हुई है। कपूर परिवार को कौन नहीं जानता। उस परिवार से जब जुड़ते हैं लोग, तो आपो आप उनकी जो विरासत है, जो उनकी लेगेसी की बात होती है, लेकिन उनके अलावा भी कुछ और भी टैलेंटेड एक्टर्स एक्ट्रेसेस से वो जुड़ी हुई है। नॉट इमीडिएट फैमिली, ऑफ कोर्स, लेट मी क्लेरिफाई दैट, कि वेट नॉट वेरी वेरी इमीडिएट फैमिली, लेकिन फिर भी जुड़ी हुई है। तो बता रहे हैं आप मुझे ढेर सारे कॉल्स के साथ, अगर आप और भी नाम जानते हैं तो बिल्कुल बताइएगा, बताऊंगी, मैं भी आपको बताऊंगी जो मुझे नाम पता है। लेकिन चलते हैं एक गीत की तरफ, होगा एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन से और नाम आप मुझे बता रहे थे और मैं भी जानती हूँ कि जो उनसे जुड़े हुए हैं। चलिए, सिंस आई एम गोइंग ऑन अ ब्रेक, बिफोर दैट आई विल टेक वन मोर कॉल ऑन एयर। जी बताइए, क्या है आपका जवाब? यू आर लाइव ऑन एयर।
1: हाँ, सैफ अली खान, शर्मिला टैगोर,
0: यस
1: आलिया भट्ट
0: यस आलिया भट्ट उनकी भाभी।
1: एंड
0: जी जी बताइए।
1: सैफ अली खान एंड सोहा अली खान, कुणाल खेमू।
0: हाँ, वंडरफुल वंडरफुल, आप सही जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और आपका नाम क्या है?
1: संजय।
0: संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उनकी एक मौसी है, तो कौन है भाई उनकी मौसी? चचेरी मौसी, चलिए लेट मी पुट इट दैट वे। उनकी मौसी की भी करेंगे बात, एंड हाउ शी इज़ रिलेटेड टू बच्चन। जी हाँ, बच्चन से वो कैसे रिलेटेड है वो भी करेंगे बात, लेकिन आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक।

0: कुर्बान फिल्म से सुना आपने ये गीत जी। बिल्कुल, कमर्शियल ब्रेक में जाने से पहले और भी बहुत सारे कॉल्स हैं जो मैं ले नहीं पा रही हूँ ऑन एयर, क्योंकि अभी थोड़ी सेकंड्स में होगा कमर्शियल ब्रेक। जाने से पहले आपको पीएमजी ज्वेल्स के लिए बता दूं, दे आर लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट फ्रिस्को में। दैट कैन टेल यू अ स्टोरी। जी हाँ, त्यौहार है, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, अब नवरात्र भी शुरू हो गए, दिवाली। उसके अलावा अगर आप ब्राइडल कलेक्शन के लिए जाना चाहें, डायमंड्स के लिए, ब्यूटीफुल गोल्ड, एक ही नाम है, दैट इज पीएमजी ज्वेल्स, फ्रिस्को में है लोकेटेड। कहीं मत जाएगा, आपको कुछ और कहानियां बतानी है ना? आपको बताना है कि करीना कपूर खान के साथ कौन।
1: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
2: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
1: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 12 pm to 3 pm. This weekend let the Flavor Lounge do the cooking.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स में सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
10: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, but chili paneer bao, kahani mein twist.
11: Chicken tikka, purani mohabbat, but burrata chicken tikka, new love.
10: And pistachio lamb chops?
11: Full on flavor ka fusion.
12: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic, now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
13: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
14: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ अनीशा रेडियो पर।

एक बेमिसाल अदाकारा जिन्होंने कभी भी ये क्लेम नहीं किया अपनी जिंदगी में कि भाई मैं नंबर वन हूँ, आई एम द सुपर स्टार। हमारी इंडस्ट्री में फीमेल सुपर स्टार्स भी रही है, जैसे कि श्रीदेवी, शी हैज़ बिन ऑलवेज अ फीमेल सुपर स्टार। लेकिन उन्होंने, मैं करीना कपूर की बात कर रही हूँ, एंड उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि भाई मैं करीना कपूर खान हूँ, नंबर वन हूँ मेरे स्पॉट पे। उन्होंने कभी भी कंपटीशन भी नहीं की, बिकॉज शी नोज कि शी हैज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट स्टाइल, वेरी यूनिक स्टाइल। चाहे वो अदाकारा सीरियस रोल में हो, चाहे वो वेरी फनी रोल्स में हो, वो गोलमाल में हो दिखे, या ओमकारा में दिखे, या जब वी मेट में दिखे, और इवन थ्री इडियट्स फॉर दैट मैटर, राइट। हर एक रोल में शी कैन फिट इन टू, शी नोज दैट वेरी वेल, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी विरासत जो है पृथ्वीराज कपूर साहब की। और मेरे मेरे पास और भी कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स इनफैक्ट आ रहे हैं, उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, कजिन्स के नाम, उनके नाम वगैरह वगैरह। सो कपूर परिवार के अलावा अगर आप देखें तो उनके पति देव सैफ अली खान, पटौड़ी खानदान की वो बहू है, तो ऑफकोर्स शर्मिला टैगोर उनकी सास हुई, कुणाल खेमू जो है, जो सोहा अली खान, एक्चुअली नॉट सोना अली, सोहा अली है सैफ अली साहब की बहन, उनकी जो शादी हुई है वो है कुणाल खेमू। तो कुणाल खेमू इज अ ग्रेट ब्रिलियंट एक्टर एज वेल, एंड शो इज सोहा अली। उसके अलावा उनकी जो मौसी की मैं बात कर रही थी, तो वेल बबीता जो है उनका लास्ट नेम था शिवदसानी, सिंधी परिवार से जुड़ी हुई है, और उनकी फर्स्ट कजिन चाचा की बेटी का नाम है साधना शिवदसानी। नाउ यू रिमेम्बर साधना, लग जा गले कि फिर रात हो ना हो, वो कौन थी इसे लेके बहुत अच्छी अच्छी उनकी फिल्म आई, मेरा साया फॉर दैट मैटर। तो वही साधना कट वाली साधना उनकी फर्स्ट कजिन है बबीता की। सो हुई ना मौसी, जी हाँ, बबीता की मौसी है साधना। अपार्ट फ्रॉम दैट, बच्चन की बात कर ले, जी हाँ, परिवार बच्चन परिवार की बात कर ले, तो जो उनकी बुआ है यानी कि जो उनकी फूफी है रितु कपूर, रितु कपूर के बेटे निखिल नंदा है, और उनकी शादी हुई है श्वेता बच्चन से। जी हाँ, श्वेता बच्चन, अमिताभ जी की जो बेटी है श्वेता बच्चन, उनके पति देव है निखिल नंदा, एंड निखिल नंदा एज वी ऑल नो रितु कपूर के है बेटे। तो हुए ना बहुत बड़ा परिवार। हम अक्सर कहते हैं कि बॉलीवुड बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन बॉलीवुड में भी इंटरनल कनेक्शंस बहुत है। ऐसी बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे, आपको और भी गाने सुनवाते रहेंगे टिल 2 PM, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग करीना कपूर खान।

इफ़ आई रिमेंबर ऑन वन ऑफ द करण जौहर शोज कॉफ़ी विद करण की मैं बात कर रही हूँ एंड आई यूज टू वॉच दैट अ लॉट. बहुत अच्छा लगता था मुझे. वेरी वेरी कैंडिड कन्वर्सेशन एंड करण कपूर इज़ अ ग्रेट होस्ट बाय द वे. सो उन करण जौहर क्यों करण कपूर बोल रही हूँ, करण कपूर उनके कज़िन है. खैर, सो करण जौहर की कॉफ़ी विद करण की मैं बात कर रही हूँ. इन वन ऑफ द शोज़ एंड करीना कपूर ने दो या तीन सीजन्स में उनके साथ बातचीत की है कॉफ़ी विद करण में. वन ऑफ द शोज़ करण जौहर ने उन्हें पूछा कि यू नो यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर, इतनी सारी हीरोइंस आपके साथ काम कर रही है, रानी मुखर्जी एंड दिस एंड दैट, और बहुत सारे नाम दिए. तो करीना कपूर ने ये जवाब दिया था कि नहीं, क्योंकि मैं खुद ही अपनी फेवरेट हूँ. उन्होंने एंड यू नो वेरी वेरी नाइसली शी सेड दैट कि मैं खुद ही अपनी फेवरेट हूँ, सो आई नेवर बिलीव्ड इन एनी कंपटीशन एंड दैट्स सो ट्रू. आई हैव नेवर सीन हर और कि कभी इंटरव्यूज़ में या कभी भी कहीं पे भी कि भाई नहीं मुझे ये रोल मिलना चाहिए था, नहीं मुझे ये करना चाहिए था. शी नेवर डिड दैट. ऑन दैट नोट, रामलीला का जो रोल था, दीपिका पादुकोण का रोल, दैट कुड हैव बीन करीना कपूर. लेकिन संजय लीला भंसाली जब ये फिल्म लिख रहे थे एट दैट टाइम, रणबीर कपूर उनके, रणबीर सिंह नॉट कपूर, उनके दिमाग में, जहन में थे. एंड जब उन्हें ये पता चला कि कोई वेरी रिलेटिवली अ न्यू कमर इज़ डूइंग दिस फिल्म, उन्होंने ना कर दी थी इस फिल्म को करने के लिए. एंड देन ऑफकोर्स शी माइट्स हैव रिग्रेटेड दैट फैक्ट, लेकिन कभी भी उनको ये नहीं लगा था कि मुझे ये करना है पॉलिटिकली. थ्री डिड एनी मोमेंट्स कि मुझे हीरोइन सबसे आगे जाना है, सबसे बेहतर काम करना है, क्योंकि ऐसे जैसे कि उन्होंने करण जौहर को कहा था कि मैं ही खुद ही अपनी फेवरेट हूँ. कोई माने ना माने, मैं ही खुद अपनी हीरोइन हूँ, मैं ही खुद अपनी फेवरेट हूँ, एंड दैट इज़ करीना कपूर.

0: उलझी हुई जिंदगी में जिंदगी कट जाती है। और ख्वाहिश है ये जो गाना आपने सुना हीरोइन फिल्म से। जी हाँ, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी, इफ़ यू आर अ फैन ऑफ करीना कपूर, या नहीं भी है, चलिए मान लीजिए आप नहीं है फैन, इतने बड़े फैन नहीं है, बट यू लाइक टू वॉच हर फिल्म्स, अगर ये फिल्म मिस हो गई है फॉर वॉट एवर रीज़न, मधुर भंडारकर की ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म ऑफ करीना कपूर, जहाँ पे बॉलीवुड में एक हीरोइन की बात है, एंड एज यू नो कि मधुर भंडारकर लाइक्स टू टेल स्टोरी इन अ डिफरेंट वे। तो बॉलीवुड में जो हीरोइंस होती है उनकी कितनी इनसिक्योरिटीज़ होती है, एंड टू गेट अहेड व्हाट काइंड ऑफ यू नो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दैट दे हैव टू डू, वो सारी बात है उन इन दैट फिल्म जिसका नाम है हीरोइन। और हीरोइन है आज की हमारी करीना कपूर खान, जिनका जन्मदिन है 21 सितंबर। तो हमने सोचा कि चलिए आज उनकी कुछ बातें हो जाए, उनके गाने हो जाए आप सभी के साथ। एंड यू नो एज वी ऑल नो, OTT इज़ अ न्यू ट्रेंड सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स। तो भाई हर कोई कलाकार जब OTT फिल्म्स करता ही है, आता ही है। वेब सीरीज अभी तक उन्होंने नहीं की है करीना कपूर ने, बट एक फिल्म बिल्कुल की है, जो फिल्म बहुत चर्चे में रही फॉर हर नेगेटिव शेड्स इन दैट फिल्म। बताएंगे मुझे आप, यस आप मुझे बताएंगे कि अगर आपने वो फिल्म देखी है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, एंड दैट इज़ करीना कपूर वेरी फर्स्ट एंट्री इन OTT प्लेटफॉर्म, जहाँ उनका नेगेटिव शेड था, बट वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। अगर जयदीप अहलावत, यस इफ आई रिमेंबर दैट नेम करेक्टली, वो उनके साथ थे, एंड ही वॉज प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर थे। चलिए इतनी सारी आपको मैंने क्लू दे दी, अब आपको सिर्फ ये करना है कि मुझे नाम बताना है कि वो फिल्म कौन सी थी कि जहाँ पर उनकी एंट्री हुई थी। एंड दिस फिल्म एक्चुअली वॉज सच ए वंडरफुल फिल्म, उसको उनको इस फिल्म के लिए कुछ OTT प्लेटफॉर्म के अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। बताएंगे मुझे आप कि नेटफ्लिक्स की ये फिल्म है कौन सी।
1: ओ जालिम आ जाना।
2: हमें एक फोटो मिली है पैराडाइज से,

0: सवाल मैंने पूछा है, एक बार फिर से दोहरा रही हूँ कि कौन सी फिल्म नेटफ्लिक्स पे पहली उनकी रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म की, जो अगर आपने देखी है एंड इफ़ यू रिमेम्बर, जहाँ पर जयदीप अहलावत थे उनके साथ एंड ऑल्सो विजय वर्मन, विजय वर्मा एक्चुअली। फनीश, आर यू लाइव ऑन एयर?
1: हाय, दिस इज स्वप्निल।
0: यस स्वप्निल जी, बताइए सर।
1: आप जो मूवी की बात कर रहे थे, करीना, जयदीप अहलावत एंड विजय वर्मा, वो जाने जा।
0: यस जाने जा, एंड आपने देखी थी ये फिल्म, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी तब?
1: हाँ बिल्कुल, देखी थी।
0: देखिए, इट वाज अ ग्रेट फिल्म, राइट? वेरी वेरी वेरी वेल मेड फिल्म, थ्रिलर थी, सस्पेंस थ्रिलर भी थी। सो थैंक यू सो मच स्वप्निल जी, नाइस नेम बाय द वे, थैंक यू स्वप्निल जी।

विजय वर्मा जो थे एक इंस्पेक्टर थे जो एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने आए हैं, एंड जयदीप अहलावत उनके नेबर है जो ये कैरेक्टर है जाने जाए फिल्म की बात करी हूँ मैं। एंड करीना कपूर आई बिलीव शी हैज़ अ सन एज वेल, मुझे पूरी कहानी याद नहीं है लेकिन आई नो इट्स अ मर्डर मिस्ट्री। और किस तरह से वेरी स्मूथली यू नो द होल फिल्म इज सो स्मूथ कि आपको एंड तक पता नहीं चलता कि इसमें मर्डरर कौन हो सकता है, एंड दैट इज जाने जा। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट करीना कपूर इन दिस फिल्म दैट आई लाइक्ड अबाउट कि हाँ उनकी एक्टिंग तो है ही, नो डाउट अबाउट दैट, कि उन्होंने बहुत संजीदा रोल किया है इस फिल्म में जिस विच इज़ अ मर्डर मिस्ट्री जाने जा। लेकिन उसके अलावा इस फिल्म में उन्होंने बहुत ग्लैमर नहीं दिखाया है, वेरी सिंपल लेडी, एंड जो मम्मी भी है एंड आई थिंक शी इज़ ऑल्सो अ टीचर और समथिंग, शी इज़ वर्किंग समवेयर विदाउट मेकअप, शी हैज़ डन दिस एंटायर फिल्म विदाउट मेकअप, और उनकी एज ऑफकोर्स रिफ्लेक्ट होती है उसमें, उनके बाल एवरीथिंग, शी हैज़ केप्ट इट वेरी वेरी नेचुरल, सो शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ शोइंग हर एज नाउ कि भाई मैं तो हीरोइन हूँ बॉलीवुड की, मैं एक ज़माने की पू रही, मैं एक ज़माने की बेबो, हाउ डू यू थिंक मैं ऐसे रोल करूँगी जहाँ पर मेकअप ना हो, मेरे बाल के हाल देख लो, वेरी वेरी सिंपली डन, जैसे कि कोई नेक्स्ट डोर नेबर है आपकी, विदाउट मेकअप, विदाउट हेयर डन एंड विदाउट वेरी वेरी फैशन यू नो डिज़ाइनर के कपड़े, बट ब्यूटिफुली मेड फिल्म, एंड दैट इज़ करीना कपूर, कि वो अब शायद जानती है कि बॉलीवुड में बहुत काम कर लिया, एक्सपेरिमेंट बहुत कर लिए, डिफरेंट रोल्स कर लिए, अब कुछ अलग करना है, बट शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डूइंग डिफरेंट इन हर ओन ओरिजिनल अवतार, एंड दैट इज़ करीना कपूर की बातें कर रही हूँ मैं। 2 बजे के बाद होगी कम्युनिटी की बातें विथ मी योर होस्ट नीलम, विशिंग करीना कपूर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम फनेशिया टीम।

दिस इज KZMP 104.9 FM फनीशा रेड पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ और ये कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं आप ही की सेवा में हर शनिवार की तरह एंड दैट इज कम्युनिटी राउंडअप। कम्युनिटी राउंडअप क्या है? ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हमारी कम्युनिटी में होने वाले बहुत सारे नॉन प्रॉफिट इवेंट्स, एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज की जानकारी हम आप तक लाते हैं। कुछ ऐसे कार्यक्रम जिसकी जानकारी हम आपको देते भी है और उसके साथ हमारे साथ जुड़ते भी है प्रतिनिधि एवरी वीकेंड टिल 3 PM होता है ये कार्यक्रम। कार्यक्रम के दौरान आप ही की पसंद के कुछ पेट्रियोटिक, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल गाने होते हैं और बहुत सारी बातें होती है हमारी कम्युनिटी की। तो चलिए देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। एंड इट इज ब्रॉट यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर, a platform to promote any of your religious and social activities, social and non-profit events during this hour every Saturday only on 104.9 FM.

कुछ मोटिवेशनल बातें, कुछ इंस्पिरेशनल गाने और यही सारी बातें और गाने हम प्रस्तुत करते हैं आपके लिए हर शनिवार की दोपहर ऑन 104.9 FM रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। चलिए कुछ इवेंट्स की आपको जानकारी हम देते चले। शंकर आय फाउंडेशन प्रेजेंट्स गरबा राज, जी हाँ, October 3rd एंड द वेन्यू बिटवीन 7 to 11 PM इन प्लेनो टेक्सस एंड इट इज इन वेन्यू इज मेपल शेड लेन 3601 प्लेनो टेक्सस। वंस अगेन दैट इज शंकर आय फाउंडेशन गरबा ऑन October 3rd। गुरुकुल स्वामीनारायण संस्था इन डालस, दे आर हैविंग विसर्जन टुडे एट 5 PM। जी हाँ, सत्संग सभा एंड गणेश विसर्जन टुडे एट 5 PM। उसके अलावा कल बिल्कुल आप जा सकते हैं आनंद बाजार, DFW हिंदू टेम्पल में कल है आनंद बाजार स्टार्टिंग एट 12 o'clock। वंस अगेन इट इज नून till 4 o'clock, Anand Bazaar, free entry for entire community at DFW Hindu Temple in Irvine.

एंड बिल्कुल सितंबर 14th थ्रिल 25th गणेश महोत्सव अष्ट विनायक डैलस के राजा एंड राधा कृष्ण धाम इन एलन इन डैलस दैट इज राधा कृष्ण धाम. Radhashtami Satsang happening tomorrow, Saturday, September 20th, and that is Sunday, 4:30 p.m. at Trinadnam Haveli in Coppell, Texas. That is Radhashtami celebration. And as I said, DFW Hindu Temple is having Anand Bazaar tomorrow, 12 o'clock, and also they have Annakoot tomorrow in the morning at 11 a.m. Ganesh Visarjan will be on 25th of September, Friday. o'clock till 8:30 p.m. आप join कर सकते हैं क्लीन अप डे. जी हाँ, एंड दैट इज युवा इम्पैक्ट DFW गुजारी समाज क्लीन अप डे, एंड द लोकेशन इज हेरल्ड पार्क इन फ्रिस्को. वंस अगेन, दैट इज हेरल्ड पार्क इन फ्रिस्को, एंड दैट इज क्लीन अप डे बाय DFW गुजराती समाज. रिदम्स ऑफ इंडिया सपोर्ट अ चाइल्ड, ये है एक चैरिटी का नाम जो प्रस्तुत करते हैं रिदम्स ऑफ इंडिया, एंड आप जा सकते हैं 27th ऑफ सितंबर संडे. वेन्यू इज अतिथि इवेंट हॉल. वंस अगेन, दैट इज अतिथि इवेंट हॉल, सितंबर 27th, सपोर्ट अ चाइल्ड. सितंबर 23rd आप बहुत ही एक अच्छे स्पीकर है जिनको अगर आपने पहले कभी नहीं सुना, आई वुड हाईली रिकमेंड, एंड दैट इज डॉक्टर गुणवत्सल स्वामी. जी हाँ, एंड इज अ ग्रेट ग्रेट लाइफ कोच एंड एमिनेंट स्पीकर हु इज गोइंग टू बी इन डैलस. तो आप बिल्कुल जा सकते हैं उनको सुनने के लिए, एंड इट इज हैपनिंग एट SLPS कम्युनिटी सेंटर ऑन सितंबर 23rd वेंसडे. वंस अगेन, दैट इज हैपनिंग एट SLPS कम्युनिटी सेंटर ऑन सितंबर 23rd, 6 PM टिल 7 PM. दैट इज अ ग्रेट स्पीकर डॉक्टर गुणवत्सल स्वामी. फोर्ट वर्थ हिंदू टेम्पल, जी हाँ, हिंदू टेम्पल ऑफ

ग्रेटर फोर्ट वर्थ एंड दे आर हैविंग गणेश विसर्जन टुमारो सितंबर 28, जहां पर 14 से गणेश उत्सव की सेलिब्रेशन हो रही थी, एंड टुमारो सितंबर 20 दे आर गोइंग टू हैव अ गणेश विसर्जन. सो मैनी टेम्पल्स अक्रॉस ऑफकोर्स DFW आर हैविंग गणेश उत्सव गोइंग ऑन. सम टेम्पल्स आर हैविंग गणेश विसर्जन टुमारो, दैट इज संडे, एंड सम टेम्पल्स आर हैविंग ऑन फ्राइडे, विच इज द लास्ट डे, 10th डे ऑफ दिस उत्सव, एंड दैट इज सितंबर 25. तो ऐसे बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने आप ही की पसंद के, आप ही के लिए, क्योंकि ये है आपका कार्यक्रम, बनता है हमारी कम्युनिटी से और कम्युनिटी के लिए ही होता है ये कार्यक्रम, एवरी सैटरडे बिटवीन 2 एंड 3 PM ऑन 104.9 FM.

0: बहुत ही खूबसूरत ये गीत आपने सुना जी, बिल्कुल। एंड दिस इज इन द वॉइस ऑफ ए आर रहमान जी के साथ, ए आर रहमान का संगीत एंड नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ थी। ननद दद नुसरत फतेह अली खान साहब ऑन 104.9 एफएम वन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूँ नीलम आपके साथ और ये कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ हर शनिवार की दोपहर टिल 3 PM, ब्रॉट यू बाय अवर सीईओ वैशाली ठक्कर। और कुछ बातें हो जाए, वीकली फाउंडेशन क्लासेस दैट इज इस्लाम 101 एंड दिस इज स्टार्टिंग एट संडे सितंबर 20th एट 2 PM एट INT मस्जिद। कम्युनिटी सपोर्ट एंड वेटरन्स नॉन प्रॉफिट इवेंट्स की ऐसी बहुत सारी जानकारी भी हम आपके लिए लाते हैं। एंड आपके लिए एक और जानकारी है, 5th एनुअल MIA रिकॉग्निशन सनसेट सेरेमनी दैट इज हैपनिंग टुमारो एट 6:30 PM एंड इट इज हैपनिंग इन द कॉलोनी टेक्सास। और जैसे कि हमने बताया कि संडे विच इज टुमारो 4th हिंदू टेम्पल इज हैविंग गणेश विसर्जन, अलॉन्ग विद दैट स्वामीनारायण गुरुकुल संस्था इज हैविंग विसर्जन टुडे एट 5 PM। रघुनाथ टेम्पल इन मंदिर इन प्लेनो इज हैविंग विसर्जन टुमारो। टुमारो देयर इज ऑल्सो एन आनंद बाजार, अ फ्री एंट्री फॉर एंटायर कम्युनिटी आनंद बाजार, फूड फेस्टिविटीज एंड दिस इज हैपनिंग इन अरविंग DFW हिंदू टेम्पल। तो 25th ऑफ सितंबर जहां पर आप जा सकते हैं बहुत सारे और भी गणेश उत्सव सेलिब्रेशन में, लेकिन जैसे कि हमने कहा 25th इज द लास्ट डे ऑफ गणेश उत्सव, तो आप जहां पर भी जाना चाहे। एंड सम टेम्पल्स आर हैविंग विसर्जन टुडे, सम टेम्पल्स आर हैविंग विसर्जन टुमारो। अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं और आप भी सोचते हैं कि भी हमारे भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जो भी आपकी धार्मिक संस्था है, जो भी आपकी नॉन प्रॉफिट इवेंट है, जो भी आपके रिलीजियस इवेंट्स है, उसकी जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहें, एंड इफ यू आर एसोसिएटेड विथ एनी नॉन प्रॉफिट 501c3, तो बिल्कुल प्लीज रीच आउट टू अस neelam@vanesha.net, दैट इज NEELAM@vanesha.net, क्योंकि यह है हमारा मकसद, यह है हमारा ध्येय, अ वेरी वेरी हम्बल एफर्ट, वेरी वेरी हम्बल अटेम्प्ट टू हेल्प द एंटायर कम्युनिटी, रिगार्डलेस कि आप कहाँ से है, किस कंट्री से है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, साउथ एशियन कम्युनिटी से नहीं भी है। इफ यू आर इन द मेन स्ट्रीम एंड इफ यू आर लिसनिंग टू दिस शो राइट नाउ एंड इफ यू वांट एनी ऑफ द सोशल प्रमोशंस, देन प्लीज डू रीच आउट टू अस, दैट इज neelam@vanesha.net, क्योंकि ये है वनेशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। चलिए उसी बात पर, कम्युनिटी की जब बातें निकली, कभी कभार ये होता है कि हमारे साथ हमारे घर पे कोई परिवार वाले आते हैं कहीं से भी बाहर से, एंड दे मे नॉट हैव द राइट इंश्योरेंस, राइट? तो उस वक्त आप जब कोई अफोर्डेबल प्राइमरी केयर की तलाश में है, आई विल गिव यू वन नंबर, दैट इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर 214-666-6259, और यू कैन विजिट passionhealthphysicians.com, जहाँ प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट और टेली हेल्थ भी आपको बिल्कुल मदद कर सकते हैं ये सारी चीज़ों में, एंड दैट इज पैशन केयर। एंड करंटली अगर आप फ्रिस्को लोकेशन में जाए, दे आर ऑल्सो ओपन ऑन संडेज। जी हाँ, आपने सही सुना, कभी कभार ये होता है ना हमारे साथ कि भाई मंडे टू फ्राइडे वी आर सो बिजी एट अवर वर्क, जाना होता है डॉक्टर के पास, वी वांट टू सो बैडली गो कि हाँ कितने दिनों से जुकाम है, कितने दिनों से ये चल रहा है, वो चल रहा है, वक्त नहीं मिलता। समटाइम्स इवन टू गो टू द डॉक्टर वी आर थिंकिंग यार कौन ऑफिस से गुलटी मारे, कौन बोले कि भाई जाना है 2 घंटे, यू नो देर आर सो मेनी अदर मीटिंग्स। वेल, चलिए आप संडे चले जाइएगा, एंड दैट इज एट फ्रिस्को लोकेशन, एंड 214-666-6259 इज देयर नंबर। कुछ और भी गाने हैं, कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी कम्युनिटी इवेंट्स है, और एक बहुत ही खूबसूरत कहानी भी आपके लिए। जी हाँ, कोशिश करती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो जो पॉजिटिव बातें होती है एंड इंस्पिरेशनल बातें होती है, जो भी मोटिवेशनल बातें होती है, कहानियाँ होती है जो मैंने कहीं पर सुनी हो, आपके साथ शेयर करने की बिल्कुल कोशिश करती हूँ ड्यूरिंग दिस आवर, एंड दैट इज सैटरडेज। जी हाँ, एवरी सैटरडे 2 to 3 PM। यह है आपका कार्यक्रम, पूरी कम्युनिटी का कार्यक्रम, जो हम प्रस्तुत करते हैं हर शनिवार की दोपहर 2 से 3 के बीच में। सो कहीं मत जाएगा, बी विथ अस, बी विथ ऑन दिस चैनल, बिकॉज दिस इज वनेशा रेडियो, दिस इज वनेशा रेडियो, योर रेडियो, अ कम्युनिटी रेडियो, वनेशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। और जैसे कि मैंने कहा, कुछ और भी गाने हैं, कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी कहानियां हैं।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
2: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता दस दिन अगले ट्यूसडे
3: तारीख पर तारीख
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट आज बुखार आज डॉक्टर आज इन्फेक्शन आज डॉक्टर आज एनुअल चेकअप आज डॉक्टर प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग प्लेनो फ्रिस्को मकिनी ऑबरी
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259
5: सेम ऑर्डर अगेन सेम पिज्जा सेम टेस्ट सेम स्टोरी टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: Shaadi Biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar. खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
8: हेलो वीकेंड लंच इमरजेंसी हेल्पलाइन हाउ मे आई हेल्प यू
9: हेलो मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है
8: फिकर नॉट वी हैव द Perfect solution.
7: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
10: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration. From top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.

वो सुबह हम ही से आएगी जी, बिल्कुल। बदलाव अगर लाना है तो बदलाव हमें ही लाना पड़ेगा, पहले हमें बदलना पड़ेगा तब दुनिया बदलेगी। मैं हूँ नीलम, आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ हर शनिवार के दोपहर 12 से 3 के बीच में। और ये कार्यक्रम जो भी आप फिलहाल मुझे सुन रहे हैं, ये कार्यक्रम आपके लिए मैं लाती हूँ 2 से 3 के बीच में। कम्युनिटी राउंडअप की होती है ये सारी बातें, और बहुत सारे कॉल्स होते हैं आपके, आप ही की पसंद के कुछ गाने होते हैं, कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ मोटिवेशनल एंड कुछ स्पिरिचुअल गाने भी होते हैं उसके अलावा। हमारे साथ जुड़ते हैं हर शनिवार की दोपहर, हम आपके लिए लाते हैं कोई भी संस्था के, सामाजिक या धार्मिक संस्था के प्रतिनिधि टू टॉक अबाउट देयर अपकमिंग इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़। चलिए इसी की बात के साथ, बिफोर वी कंक्लूड द सेगमेंट, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है जो आपने हमेशा कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, बट समटाइम्स द वर्ड्स डज मेक डिफरेंस, राइट। हम बोलते हैं पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिविटी होती है वो हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। तो ये कहानी है एक ब्लाइंड व्यक्ति व्यक्ति की, दृष्टिहीन की, जो अपनी तकदीर से, ज़िंदगी से लड़ रहा था। और शहर के एक बहुत ही इलाके, जहाँ पर बिजी इलाका होता है, वहाँ पर वो बेचारा गरीब आदमी था, फुटपाथ पर बैठा हुआ था। और छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं उसकी पत्नी ने बनाए थे, छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने, वो बेचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहीं बेचकर वो अपना पेट पालता था, अपने परिवार का पेट पालता था। और जितने भी लोग वहाँ से पसार होते थे, पासर बाय जो होते थे, वहाँ पर एक छोटा सा कार्डबोर्ड रख दिया था, जिस पर लिखा था कि भाई मैं अंधा हूँ, कृपया मेरी मदद करें और इसमें से कुछ खरीद ले। सो इतनी जो सुबह थी, वहाँ से सुबह से दोपहर होने आई, इट वॉज सच अ बिजी एरिया, सब लोग अपनी तेज़ रफ्तार में दौड़ रहे थे, किसी को ऑफिस जाना था, किसी को स्कूल जाना था, सबके हाथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थी, लेकिन कोई भी इस आदमी की, बूढ़े आदमी की कोई मदद नहीं कर रहा था। अब तक उसके कोई भी खिलौने बिक नहीं रहे थे, और वो सोच रहा था कि ये कैसे खिलौने बिकेंगे, क्योंकि सुबह से दोपहर होने तक आई और बूढ़ा बहुत ही उदास बैठा हुआ था। तभी से वहाँ से एक युवा गुजरा, और उसने बहुत ही आराम से चल रहा था, उसने ये कार्डबोर्ड देखा जिस पे लिखा था कि मैं अंधा हूँ, मेरी कृपया मदद कर लीजिए, कुछ खरीद लीजिए। उसे बहुत ही हैरानी हुई कि अब तक इतना कुछ लिखने के बावजूद किसी ने कोई भी खिलौना लिया क्यों नहीं है। वो नीचे बैठा, पहले तो बूढ़े को लगा कि ये कुछ खरीदेगा मेरे पास से, तो उसने कहा बेटा कुछ खरीदोगे? उसने कहा कि नहीं नहीं चाचा, कुछ खरीदना नहीं है, मैं बस कुछ लिखने आया हूँ। बूढ़े को लगे कि पता नहीं क्या लिखने आया है, तो उसने वही कार्डबोर्ड पे कुछ लिख दिया और फिर वो निकल गया वहाँ से। पता नहीं उसने क्या जादू किया था, वो क्या शब्द थे कि थोड़ी देर में सब लोग वहाँ से, जितने भी गुजर रहे थे, सब लोग वहाँ पर रुक रहे थे और कहीं ना कहीं से छोटे मोटे जो भी उनके खिलौने थे वो ले रहे थे। सब वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई, अरे बाबा मुझे भी ये खिलौना चाहिए, मुझे वो दिया चाहिए, ये चाहिए वो। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में पूरी उसकी जो इतनी टोकरी थी वो सारी खाली हो गई, उसके पूरे खिलौने बिक गए थे। बूढ़े को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, मैं सुबह से ट्राई कर रहा था, दोपहर होने आई थी, कोई कुछ नहीं ले रहा था, और पता नहीं उसने क्या लिखा था। शाम ढलने को आई, वो बूढ़ा बैठा रहा कि वो शायद नौजवान मिल जाए, काम से वापस लौटे। फिर से उसने वही जूतों की आहट सुनी, वही चलने के अंदाज, और वही वो नौजवान वहाँ से गुजर रहा था। उसने कांपती आवाज़ में पूछा कि बेटा तुम ही हो ना जो दोपहर में आए थे और मेरे पास कुछ लिखा हुआ था और तुमने कहा कि नहीं चाचा मैं कुछ और लिख दूंगा, आखिर तुमने किया क्या था? तो वो नौजवान मुस्कुराने लगा। उसने कहा चाचा मैंने कोई जादू नहीं किया था, मैंने कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं थी मेरे पास कि मैंने घुमाई और आपके खिलौने को, मैंने सिर्फ इतना लिखा था आज का दिन बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं, फर्क इतना ही है, मैं देख नहीं सकता। और देखिए कभी कभार जो शब्द होते हैं दे मे लीव अ वेरी वेरी लास्टिंग इम्प्रेशन। और वहीं हुआ, वो जो शब्द थे, लोग जा रहे थे, अपनी तेज़ रफ्तार में गुजर रहे थे, अपनी ज़िंदगी में गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी रुक गए, क्योंकि उन्हें लगा कि जी हाँ कितनी सही बात है, हम देख सकते हैं ये ज़िंदगी को, ये खूबसूरत दिन को, लेकिन ये बेचारा आदमी देख नहीं सकता और ना तो वो अपने खिलौने बेच सकता है। और बस फिर क्या था, अ सिंपल वर्ड, अ सिंपल पॉजिटिविटी ज़िंदगी बदल देती है।

0: all those people who've lost their lives and are going through a very, very difficult time in this world.
1: कुछ inspirational बातें, कुछ motivational बातें और कुछ ऐसे ही गाने आपके लिए मैं नीलम प्रस्तुत करती हूँ इस कार्यक्रम के दौरान जिसका नाम है Community Roundup. आपके ढेर सारे calls के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार, धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि अक्सर हम कहते हैं, ये है आपका कार्यक्रम, आप ही से बनता है कार्यक्रम, ये है कम्युनिटी का कार्यक्रम. और जब कम्युनिटी की बात निकली है, चलिए मैं आपको हमारे प्रायोजक ओमर ख्वाजा की भी जानकारी दे दूँ. ओमर ख्वाजा जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के साथ कभी कभी स्ट्रेसफुल हो जाती है सिचुएशन, तो वो बिल्कुल आपकी तरफ से वो लड़ सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ. एंड यू डोंट पे अनटिल यू विन. फॉर अ फ्री कंसल्टेशन यू कैन विजिट attorneyomar.com. That is a website, attorneyomar.com. And जैसे कि हमने कहा, this segment is brought to you by Omar Khwaja. तो बहुत बहुत शुक्रिया, once again धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी का. और चलिए Omar Khwaja का नंबर भी तो आपको देती चलो, ताकि अगर आप उनको कॉल करना चाहे तो आपको पता चले कि आप कहाँ किस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. That is 469-300-5046. So Omar Khwaja and visit attorneyomar.com. चलिए मैं नीलम लेती हूँ आप सभी से आगे अनुमति. जैसे कि मैंने कहा कि ये सेगमेंट में आप मुझे सुन सकते हैं 2-3 के बीच में, 2-3 PM. एंड बॉलीवुड का जो सेगमेंट होता है, दैट इज 12-2 PM एवरी सैटरडे 12-2 PM इज अ बॉलीवुड सेगमेंट. 2-3 इट इज कम्युनिटी राउंड अप. एंड टुमारो बिटवीन 12 and 1 इट्स अ रीजनल शो. और 1-2 के बीच में आपके लिए गैर फिल्मी गाने लाती हूँ मैं नीलम. बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड्स. फनेशा रेडियो हमेशा सुनते रहिएगा, क्योंकि ये है आपका रेडियो, पूरी कम्युनिटी का रेडियो.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 ईयर्स.
6: जीनी, हुकम मेरे आका. हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
7: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका. लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
6: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
7: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
6: और एंटरटेनमेंट,
7: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में.
6: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
7: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
11: इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं. It's the time to clock out. It's the time to catch up.
13: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलिशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM. ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
14: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
15: Satya! कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
16: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
17: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
18: तुमसे मिलके दिल का है.
16: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
17: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: टीम को कोऑपरेटिव बैंक भेजो और वो लॉकर्स भी सील करवाओ अभी क्या रेशमा इंडस्ट्रीज और सूरज राइस मिल के सारे बैंक अकाउंट सील कर दो सेल्स टैक्स और एक्साइज की बहुत बड़ी चोरी है और डिपार्टमेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दो
1: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
2: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: Listen close what I gotta say, 'cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. Yeah.

0: अर्जुन है?
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
5: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
4: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
5: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
6: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
3: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
6: Barista House, richness of biryani bliss.
7: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
9: How may I help you?
10: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
9: Fikar not. We have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get coasted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
15: Bindas Bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
16: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 पीएम टू 7 पीएम फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर।

गुड आफ्टरनून डैलस, आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। आज का टॉपिक थोड़ा सिंपल है, लेकिन सच कहूँ तो हम में से बहुत लोगों के लिए सिंपल बिल्कुल नहीं है। एक छोटा सा वर्ड है NO, NO। कितनी इजीली जो है हम यस बोल देते हैं, हाँ ठीक है, हाँ मैं कर लूंगा, हाँ कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कह रहे हो तो कर लूंगा। लेकिन जब सामने वाला कुछ ऐसा पूछता है जो हम एक्चुअली नहीं करना चाहते, तब एक छोटी सी इंटरनल मीटिंग शुरू हो जाती है कि ना कहूँ क्या, नो बोलना सही रहेगा, कहीं सेल्फिश तो नहीं हो जाएगा, रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, बॉस को क्या लगेगा, फैमिली क्या सोचेगी। लेकिन फिर हम हाँ बोल ही देते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में, जो कि है सेइंग नो। बाय द वे, नो बोलना रूड नहीं है, नो बोलना सेल्फिश होना भी नहीं है, और हाँ यस बोलना ना अच्छे इंसान होने की गारंटी भी नहीं है। वैसे आप मुझे ये बताइए कि आपको नो बोलने में सबसे ज्यादा दिक्कत किस सिचुएशन में होती है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, ऑफिस, नेबर्स, या फिर किसी को डिसअपॉइंट करने के डर से? आप मुझे कॉल कर सकते हैं @972-235-5555।

अभी अभी हमें एक कॉल रिसीव हुई फ्रॉम रायन और उन्होंने बोला है कि उनकी तरफ से प्लस हमारे सारे फन एशिया रेडियो के लिसनर्स की तरफ से जॉर्ज को उनकी जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। हैप्पी बर्थडे जॉर्ज, आई होप यू आर एंजॉयिंग योर डे। और जो नेक्स्ट सॉन्ग मैं बजाने जा रही हूँ वो रायन की तरफ से आपको डेडिकेटेड है, तो आई होप यू लाइक इट।

एक बात बताइए कि हम ना बोलने से इतना डरते क्यों है, मतलब नो बोलना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? शायद क्योंकि बचपन से ही हमें यस बोलना सिखाया गया है। पेरेंट्स ने कहा गुड चिल्ड्रन लिसन, स्कूल ने कहा कॉपरेट, फ्रेंड्स ने कहा बी देयर फॉर मी, ऑफिस ने कहा प्लीज बी फ्लेक्सिबल, सोसाइटी ने कहा भाई एडजस्ट कर लो यार थोड़ा, और धीरे धीरे हमने एक इक्वेशन बना ली कि गुड पर्सन वो होता है जो सबके लिए अवेलेबल हो। लेकिन क्या ये सच है? आई मीन आई जस्ट रिसीव अ कॉल फ्रॉम सोहेल एंड मरियम इस सॉन्ग के पहले, और उन्होंने बोला कि ये जो हम ना नहीं बोल पाते ना, ये है क्योंकि हमारी कल्चरल अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, इट्स अ देसी थिंग कि हम ना नहीं बोल पाते। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी माना कि ना बोलना काफ़ी ज़रूरी है और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है और आनी चाहिए। और मरियम ने ये भी पूछा कि भाई आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है, और नेक्स्ट सॉन्ग जो है मैं उनको डेडिकेट कर रही हूँ, दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट सॉन्ग एंड आई होप यू गाइज लाइक इट।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
7: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
8: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
7: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
8: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
9: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इट्स टाइम टू टर्न अप द फ्लेम. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, sizzling flavors और चटपटे appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. Order any 2 entrees and get 1 appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
15: अजी सुनते हो?
16: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
17: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
18: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
19: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
20: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

भाई मैं भी अपने लिसनर से यही कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरी जिंदगी में बाहर बन के ही आए हैं। जब भी मुझे कोई कॉल रिसीव होती है मुझे बहुत सारा मजा आता है आप लोगों से बात करने में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेइंग नो। बाय द वे मैं बता दूं कि मैं हूँ आरजे सिमी, ओनली ऑन फनेजर रेडियो 104.9 FM। और आज के इस टॉपिक के बारे में यानी कि सेइंग नो के बारे में एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम ना बोल देते हैं ना तो कभी कभी ऐसा लगता है, हम पे एक्विजिशन सा लग जाता है कि कहीं हम सेल्फिश तो नहीं हो गए। लेकिन एक मिनट, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप ना या नो बोल देते हो तो क्या वो सेल्फिश है? या फिर आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो और एक ब्रेक चाहते हो तो क्या वो सेल्फिश है? या फिर आप किसी प्लान में कंफर्टेबल नहीं हो तो क्या आप सेल्फिश हो? हर नो जो है सेल्फिश नहीं होता, कभी कभी ना कहना एक्चुअली ऑनेस्टी भी होती है। और एक और चीज़ है जिसके बारे में सोचना बिल्कुल सेल्फिश नहीं होता, वो है हमारे फ्यूचर के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लान, इन सब के बारे में। और अगर आपको इसमें मदद चाहिए तो आप रेफर कर सकते हैं माई टाइम इक्विटी को, विच इज़ लेड बाई CPA सुधीर पाई। और ये ऑफर करते हैं पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटी

प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लान, इन सब के बारे में। और अगर आपको इसमें मदद चाहिए तो आप रेफर कर सकते हैं माई टाइम इक्विटी को, विच इज लेड बाई CPA सुधीर पाई, और ये ऑफर करते हैं पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज बताते हैं एज वेल एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान भी बताते हैं, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए हो या फिर आपके खुद के लिए। रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह में भी ये आपकी मदद कर देंगे और फ्यूचर के लिए बिल्कुल तैयार कर देंगे। तो आप उनसे अगर बातें करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए एट 469-702-1272, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज mytimeequity.com। और हम बता दें कि आज अमरीन जी नहीं है, उनकी जगह पे मैं कवर कर रही हूँ, तो रीजनल सेगमेंट तो नहीं है, लेकिन अभी हमें वेद जी का कॉल आया था और उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ सुनीता जी के लिए कुछ डेडिकेट हो जाए, तो ये जो नेक्स्ट गाना है ना वो मेरी तरफ से है आप दोनों के लिए। और सुनीता जी, आप बस एहसास कर लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि ये ना आपके प्यारे पति देव बस आपको डेडिकेट कर रहे हैं। आई होप यू लाइक इट।

देखिए, हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि आप लगातार फन एशिया की गलियों में बने रहें, और बहुत आसान है जी ऐसा करना। आपको सिर्फ 104.9 FM पर ट्यून इन रहना है और अपने फेवरेट आर्टिस्ट के बातें करती रहनी है, उनसे सुनना है और बहुत सारे गाने एंजॉय करने हैं। वैसे आज का हमारा टॉपिक है सेइंग नो, और ये ना जब दोस्ती में बोलना पड़े ना तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंडशिप में हम एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि अगर वो मेरा दोस्त है या मेरी दोस्त है तो वो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा और हाजिर रहेगा या रहेगी। लेकिन हेल्दी फ्रेंडशिप में एक और सेंटेंस होना चाहिए कि अगर वो मेरा दोस्त है या मेरी दोस्त है तो वो मेरे नो को भी रेस्पेक्ट करेगा या करेगी। अब एक सिनेरियो सोचिए कि एक फ्रेंड कहता है कि यार मुझे पता है कि तुम बिजी हो पर प्लीज आज मेरी हेल्प कर दो, और आपका जेन्युइनली मन नहीं है, आप बिजी हैं कहीं और, तो आप क्या बोलेंगे? यार आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें मुझे हेल्प चाहिए, बट मैं इस बार ये नहीं कर पाऊंगा। बस नो ड्रामा, नो गिल्ट, नो 15 मिनट का एक्सप्लेनेशन। लेकिन बात यहीं नहीं ख़त्म होती, इसके बाद शुरू होता है गिल्ट कि शायद मुझे यस बोल देना चाहिए था, क्या हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेच कर लेना चाहिए था, वो क्या सोच रहा होगा, मैंने कहीं रूड साउंड तो नहीं किया। ये गिल्ट नॉर्मल हो सकता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बार जब हम गिल्ट फील करते हैं, खुद को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सच में कुछ गलत किया है। What do you think? Let me know by calling me at 972-235-5555.

हाँ जी, मैं भी बिल्कुल बदली नहीं हूँ, जो ब्रेक के पहले थी वही हूँ, आरजे सिमी, ओनली ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम। और आज हम बहुत सारे बातें की हमने, बेसिकली अबाउट सेइंग नो, ना बोलना कितना डिफिकल्ट होता है, इन सब के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हमने कर ली हैं। लेकिन एक चीज है जहाँ पे आपको ना बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, और वो है तब जब बात आपके हेल्थ की हो। और पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर जो है ना, आपके लिए एक अमेजिंग सा प्रोग्राम लेके आए हैं, दैट्स कॉल्ड पैशन हेल्थ डायरेक्ट। और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी, या फिर पैशन हेल्थ अगर आपके इंश्योरेंस नेटवर्क से बाहर है, तो भी आप इस प्रोग्राम को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लिए इनरोल कर सकते हैं और एक अफोर्डेबल प्राइमरी केयर ले सकते हैं ओनली फॉर $85 अ मंथ। और इसमें इंक्लूडेड है प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिन्हें आप कॉल या टेक्स्ट करके पता कर सकते हैं एट दिस नंबर विच इज 214666259, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज PassionHealthPhysicians.com। वैसे बता दूं कि ये प्रोग्राम है ना, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रोग्राम, और कुछ एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन है जो आपको जरूर चेक कर लेनी चाहिए।

नेक्स्ट सॉन्ग हम बजा रहे हैं सफी के लिए और बस इस सॉन्ग के बाद लेके आएंगे आप लोगों के लिए एक गिव अवे राउंड, सो स्टे ट्यून्ड टू फनेचर रेडियो।

वैसे एक और चीज है जिसके बगैर गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो है अच्छा खाना। और अगर आपको भी अच्छे खाने की तलाश है तो आप होको जा सकते हैं। और इंडिया का ये ना मोस्ट लव्ड फूड ब्रांड है, फ्रिस्को में आ चुका है आप सबके लिए। और यहाँ पे आपको मिलेगा चना पूरी, सैंडविच, डिलिशियस करीज, लेजेंडरी होको, कोल्ड कोको भी, और ये सब कुछ एट वन प्लेस, दैट्स होको। तो होको का एक सिंपल सा रूल है कि आप भूखे पेट आइए और दिल भर के खाना खाइए, और इंडिया का टेस्ट जाते वक्त लेके जाइए खुद के साथ। और इनके पास अमेजिंग ऑफर्स भी हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इनके पास 20% स्टूडेंट डिस्काउंट है विथ वैलिड स्टूडेंट आईडी, और अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, तो भी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा ड्यूरिंग लंच आवर्स और लंच पैक्स पे। और ये अवेलेबल है मंडे थ्रू फ्राइडे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया था कि हम गिव अवे राउंड शुरू करेंगे, और इस गिव अवे में आपको होको से मिलेगा फ्री आलू टिक्की चाट खाने का मौका बाय आंसरिंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क। तैयार हो जाइए। ओके, तो आज का सवाल है अराउंड आवर फेवरेट सॉन्ग राइटर एंड सिंगर लकी अली। आज उनका जन्मदिन है, बर्थडे है भाई, तो उनपे बर्थडे स्पेशल करना बनता है। आपको मुझे बताना है कि लकी अली का एक्चुअल नेम क्या है। नंबर लिख लीजिए, आपको मुझे कॉल करना है एट 972-235-5555. Till then, do enjoy the next song, which is also from Lucky Ali.

ओके गाइज, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी आंसर दिया. बहुत लोगों ने सही जवाब दिया इस गिव अवे का. हमने आपसे पूछा था कि लकी अली का एक्चुअल नेम क्या है, एंड दैट इज मकसूद महमूद अली. और सबसे पहले सही जवाब दिया था गौतम ने. कॉन्ग्रेचुलेशंस गौतम, आपको मिलता है होको की तरफ से अ फ्री प्लेट ऑफ आलू टिक्की चाट. डू एंजॉय इट. और कमलेश जी ने भी काफी इंटरेस्टिंग बात हमारे साथ शेयर की. मैं जरूर मेंशन करूंगी इस चीज को कि उनका नाम लकी अली क्यों पड़ा, क्योंकि जब वो हुए ना तो उनके पापा को रियलाइज होने लगा कि वो बेहद लकी हैं फॉर द इंटायर हाउस एंड फॉर हिम. और वो आगे बढ़ते गए लाइफ में, काफी उन्होंने फेम कमाया, स्पॉटलाइट वगैरह बहुत सारे हिट्स दिए, तो इसलिए जो है उनका नाम चेंज करके लकी अली कर दिया गया था.

حسن تیرا توبہ توبہ توبہ توبہ حسن تیرا. आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 FM और मैं हूँ आरजे सिमी. और मैं भी तो आपसे यही कह रही हूँ कि तौबा तौबा करना सीखिए, द आर्ट ऑफ सेइंग नो. इसी के बारे में तो आज हमने बहुत सारी बातें की और अब इस सेगमेंट को यहीं क्लोज कर रहे हैं. हमारी लाइफ में वैसे बहुत सारे येस होते हैं, कुछ ब्यूटिफुल येस, कुछ स्पॉन्टेनियस येस, कुछ लाइफ चेंजिंग येस. लेकिन उन येस की वैल्यू तभी होती है जब वो हमारी चॉइस हो, हमने खुद अपनी मर्जी से वो किया हो. सिर्फ गिल्ट से बोले गए येस है ना, कभी कभी अंदर से बहुत हैवी हो जाते हैं, मुश्किल हो जाता है उनको कैरी करना. तो अगर आपसे कोई कुछ मांगे और आप जेन्युइनली वो नहीं करना चाहते, आपसे नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं है, बिजी है, जो भी जैसा भी, तो थोड़ा रुकिए, डीप ब्रेथ लीजिए और रेस्पेक्टफुली जो है मना कर दीजिए. आपको हर किसी को कन्विंस करना जरूरी नहीं है, आपको हर डिसीजन जस्टिफाई करना भी जरूरी नहीं है, और आपको हर वक्त अवेलेबल रहना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. बाउंड्रीज लोगों को दूर करने के लिए नहीं होती, बाउंड्रीज ये बताने के लिए होती हैं कि हमारी लाइफ में किस तरह का बिहेवियर जो है एक्सेप्टेबल है. एंड विद दिस आई एम गोइंग टू प्ले हसन्स रिक्वेस्ट. उन्होंने बोला था कि कुछ मजेदार एकदम तड़कता भड़कता एनर्जी वाला बताया जाए, तो आई होप कि आपको ये सुनने के बाद बहुत मजा ही मजा आए.

नहीं, आई डोंट हेट लव स्टोरी, आई एब्सोल्युटली लव देम, लेकिन एक्सीडेंट स्टोरीज कुछ ऐसी होती हैं जिनको आई एब्सोल्युटली हेल्प देम. आई डू नॉट लाइक एक्सीडेंट स्टोरीज और नन ऑफ अस डू, राइट? लेकिन ऐसा कुछ अगर एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि कार या ट्रक एक्सीडेंट या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसिडेंट, तो एक शख्स है जो आपकी मदद कर सकता है, आपकी स्ट्रेस को कम कर सकता है. इंश्योरेंस टीम वगैरह से डील करना भी उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, एंड दैट इज ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम. वो इंश्योर करेंगे कि आपका केस जो है वो लड़ें और आपको अपना ड्यू कॉम्पनसेशन जरूर दिलाएं, और आपको तब तक पे नहीं करना जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते. और इंश्योरेंस, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी हेडेक भी वही ले लेते हैं, तो आपकी लाइफ थोड़ी कम स्ट्रेसफुल हो जाती है. आप अपने हेल्थ पे, अपने जो है उस पर फोकस कर सकते हैं, अपने मेंटल वेलनेस पे फोकस कर सकते हैं, रादर देन ये डॉक्यूमेंट्स और लीगैलिटीज. और आपको अगर उनसे फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप उन्हें कॉल कीजिए एट 4693005046, या फिर आप उनके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, विच इज़ attorneyomer.com.

0: मजा आ गया दोस्तों। और ये जो लास्ट दोनों सॉन्ग बजे थे वो थे सोनू निगम के, और मैं तो भाई स्टूडियो में ही डांस कर रही थी मस्त। लेकिन अगर आपको लाइव जाके सोनू निगम की आवाज सुननी है, वहां पे सबके साथ डांस करना है, कॉन्सर्ट इंजॉय करना है, तो फटाफट टिकट ले लीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते ही तो है, इसी अगले हफ्ते ऑन सैटरडे सेप्टेम्बर 26 को सोनू निगम डैलस में होंगे। 8:30 PM से उनका शो शुरू होगा एट क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवन सेंटर एलन में। आपके सारे फेवरेट सॉन्ग, सारी आइकॉनिक उनकी जितनी भी है अमेजिंग सॉन्ग, सब कुछ लाइव सुनने का मौका मिल रहा है, तो इसका इस अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज कीजिए दोस्तों। आप फटाफट से टिकट ले लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं खरीदा है। मैं बता देती हूँ टिकट्स कहाँ मिल रहे हैं। ये मिल रहे हैं टिकट मास्टर पे, आपको एक कॉल करना होगा उनको अगर आपको इस पे और डिटेल्स चाहिए, एंड द नंबर इज 855-360-SHOWS। ओके, और इनके पूरे कॉन्सर्ट का, इनके प्रोग्राम का जो नाम है वो है रिवोल्यूशन। और ऐसा ही होता है यार, मतलब सोनू निगम ने जहाँ भी कॉन्सर्ट दिए है ना, वो खतरनाक सा एक रिवोल्यूशन टाइप का ले आते हैं अपने कॉन्सर्ट में, अपने ऑडियंस के लिए, लिसनर्स के लिए।
1: Zubi dubi zubi dubi pam para, zubi dubi param pam. Zubi dubi zubi dubi na cheeky pagal stupid man.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, but chili paneer bao, kahani mein twist.
4: Chicken tikka, purani mohabbat, but burrata chicken tikka, new love.
3: And pistachio lamb chops,
4: full on flavor ka fusion.
5: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic, now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ी, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगा एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: लगी।
10: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
5: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
13: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
12: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
13: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
14: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
2: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
14: Barista House, richness of biryani bliss.
15: साथिया।
16: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
17: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
18: तुमसे मिलके दिल का है।
17: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

Absolutely, yes. This Desi girl will also rock your world. And this is RJ Simi only on Fun Asia Radio 104.9 FM. और मेरा और आपका साथ होने वाला है 6 बजे तक. तो घड़ी तो इशारा कर रही है कि फटाफट जो है हमारे लिसनर्स को दूसरा गिव अवे राउंड भी कर दिया जाए. उनके लिए आपके लिए कुछ और देना चाहती हूँ मैं. जाते जाते तैयार हो जाइए. अगर आप ये जीतते हैं गिव अवे राउंड जो मैं अभी शुरू करने वाली हूँ, तो आपको मिलेगा चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50. और ये सिर्फ डाइन इन ऑप्शन पे अवेलेबल है. लोकेटेड है मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन. और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए अबाउट चंडीगढ़ बाइट्स, जैसे कि मेन्यू या फिर ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स, तो आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज chandigarhbites.com. वैसे यहाँ पे ना मंडे टू फ्राइडे आपको एक्साइटिंग न्यू डिशेज मिलती हैं, और इनका लंच जो है वो डेली रोटेट होता है इन द वीक. तो डू गो देयर गाइज अगर आप जो है इंजॉय करना चाहते हैं अच्छा खाना. बस एक छोटी सी गुजारिश है इस गिव अवे राउंड के लिए कि आप पार्टिसिपेट ना करें अगर आपने फन एशिया पे लास्ट वन मंथ में सेम गिव अवे जीता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाकी लिसनर्स को भी मौका मिले चंडीगढ़ बाइट्स का अमेजिंग खाना इंजॉय करने का. तो मैं अभी आपके लिए ना एक गाना बजाने जा रही हूँ, और आपको बताना है कि ये किस मूवी से लिया गया है. साथ में ही आपको एक्टर और एक्ट्रेस जो कि इसमें परफॉर्म कर रहे हैं उनका भी नाम बताना है. ओके गाइस, सो मूवी नेम प्लस एक्टर एंड एक्ट्रेस का नाम, और आपको मुझे कॉल करना है @972-235-5555.

0: ओके गाइस, हमें हमारा विनर मिल चुका है। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो सॉन्ग अभी प्ले हो रहा था दम दम, वो किस मूवी से है और उसके एक्टर्स के नाम आपको बताने थे। सो द मूवी वाज बैंड बाजा बारात एंड द एक्टर्स आर रणवीर सिंह एंड अनुष्का शर्मा। और आज के हमारे लकी विनर हैं स्वप्निल महाले। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वप्निल, आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 का डिस्काउंट ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 ऑन डाइन इन ऑप्शन। तो आप भी जरूर जाए और दम भर का खाना खाए भाई, एंजॉय कीजिए।
1: ख्वाब देख के झूठे

देखिए, अगर आपके दिल में दर्द डिस्को है तो शायद मैं उसका कुछ ना कर पाऊं, लेकिन अगर आपके पेट में दर्द डिस्को हो रहा है तो उसका इलाज है हमारे पास। आप फ्लेवर लाउंज जाइए, वहां का खाना खाइए, सारा दर्द जो है ना वो छुबंतर हो जाएगा आपको। अच्छा अच्छा खाना मिलने के बाद जो सेटिस्फैक्शन फील होगी, जो एकदम मजा आने वाला है, आपके वीकेंड का मजा दुगना हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। और तो और ये इन जो है सर्व कर रहे हैं वीकेंड लंच बुफे, यहाँ पे आपको मिलेगा माउथ वाटरिंग डिलीशियस डिशेस, एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स भी अवेलेबल हैं, शेफ स्पेशल डिशेस भी हैं और फ्रेश फ्लेवर्स मिलेंगे ताकि आप यहाँ बार बार जाएं, हर वीकेंड जाएं, ओके, फॉर दिस स्पेशल लंच बुफे। और ये सब कुछ आपको मिलेगा जस्ट एट $24.99 पर पर्सन। ये अवेलेबल होगा सैटरडे और संडे को फ्रॉम 12 PM टू 3 PM। तो भाई कल भी जा सकते हैं यार, आज अगर आपने मिस कर दिया है, अगर आप नहीं जा पाए हैं तो कल चले जाइए, क्योंकि फ्लेवर लाउंज का मतलब है गुड फूड एंड गुड मेमोरीज। और ये सब कुछ आपको जो है लोकेशन में बता देती हूँ कहाँ मिलेगा, इट इज एट प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को।

अब ये कमबख्त इश्क ही तो है जो मुझे जो है आपसे जोड़े रखता है। मेरा मन करता है कि आपसे लगातार बातें करती रहूं, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है कि मेरे जाने का वक्त हो गया है। मैं बता दूं कि दिस पार्ट ऑफ आवर शो वाज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आपकी आपको खुद के लिए भी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, या फिर आपके बिजनेस के लिए, छोटा हो, वेल एस्टैब्लिश्ड हो, कैसा भी हो, स्टार्टअप हो, तो आप जरूर एजी फिनटेक्स के पास जाइए, क्योंकि जितने भी अनटैप्ड पोटेंशियल है ना, उनको एक्सप्लोर करने में ये आपकी मदद करेंगे। ये ट्रस्टेड है, एफिशिएंट है, और आपको फ्यूचर के लिए भी रेडी करते हैं। कॉल कीजिए उन्हें एट 4699429888, या फिर आप विजिट कीजिए उनका वेबसाइट विच इज agfintechs.com। और इसी के साथ दिस इज आरजे सिमी साइनिंग ऑफ। आप बने रहिए ऑन फनेशियर रेडियो 104.9 FM फॉर अमेजिंग कंटेंट, शो एंड एंटरटेनमेंट।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites, jo aapko yahan pasand hai. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer, zarur dekhiye HEB ke naye DFW stores. Mid-Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jaye aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB, here everything is better.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: It's the time to crack out. It's the time to catch up.
12: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
13: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 4697343338, 4697343338। माई फैमिली होम लोन .com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
14: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
15: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
16: ये तारा वो तारा हर तारा।
17: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
18: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189. क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है.
19: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
15: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर.

बैक टू बैक अमेजिंग सॉन्ग्स आ चुके हैं। मैंने क्या बोल दिया डैलस वासियों को यार, एकदम से मेरे को बता दीजिए यार कोई अच्छे गाने, लोगों ने दिल पे ले लिया और फट फट मेरे को गाने के रिकमेंडेशंस आ गए। कीप हिम कमिंग यार, दिस इज अमेजिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड आई नो दैट सम ऑफ यू आर ड्राइविंग, हैंड्स ऑन द रोड, आई एम सॉरी, हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील, आईज ऑन द रोड, एंड इफ यू हैव अ कंपेनियन विद यू, दे शुड बी कॉलिंग अस। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कॉल अस, आपको नंबर याद नहीं रह रहा है, कोई बात नहीं, DMs आर ओपन, Instagram, Facebook, जहां पे भी आप हमें सर्च कर सकते हैं, सर्च कीजिए प्रेम जोशी पॉडकास्ट, मैसेज कर दीजिए, हम पढ़ लेंगे और आपको शाउट आउट भी देंगे। PREMJOSHI podcast, hit us a follow, hit us a subscribe on YouTube channel, and we are going to talk about something really interesting in this show. We're going to talk about numerology. Okay, I had a gold medalist astrologer and a numerologist on my podcast from New Delhi, and she flew in and she is now based in Dallas, and she had a 2-hour conversation with me. Okay, so it's going to be amazing. We're going to talk about it. Next gana, Sohail ne recommend kiya hai mujhe gana Sayoni, Junoon song from Sayoni, of course, but he's dedicating this song to his special person, his wife, Maryam. Here's your song from Sohail. Here we go.

सच एन आइकॉनिक सॉन्ग यार, ये गाना कितनी बार भी सुन लो यार, ऐसा लगता है कि ये पुराना गाना नहीं है. इट्स फ्रेश, इट्स ब्रांड न्यू, इट्स एवरग्रीन. ब्यूटीफुल सॉन्ग. लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप हिम कमिंग यार. 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर. एंड ऑफ कोर्स हिट अस, सब्सक्राइब, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब. इट्स कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट. ये गाने के पहले हम बात कर रहे थे कि हमने एक आइकॉनिक न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर, गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात की, हु हेल्स फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड इज नाउ इन डैलस. एंड उनके साथ हमने दो घंटा बात किया. एंड यू नो द वन थिंग दैट आई अंडरस्टूड इन दिस कॉन्वर्सेशन विच आई हैड नो आइडिया ऑफ, यूजुअली हमें क्या लगता है पता है कि हमें हमारा एक सिंगल डिजिट नंबर है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ योर बर्थ डेट इज 26, यू एड द नंबर 2 एंड 6 एंड इट बिकम्स 8. सो योर नंबर 8. वेल शी सेज 8, 17, 26, even though they are all the same number, they still have different powers. So a number 1 and number 7 ka alag alag power hota hai usme. So it was an amazing conversation. To hum thode aur iske bare mein baat karenge, but gaane ka momentum chalta rahega kyunki next gaana mere ko Ishita ne recommend kiya hai aur wo gaane ka naam hai Malang Sajana. I really love this couple, okay? Sachet Tandon and Parampara Tandon. I think they're iconic. They're superb. They have amazing skill set. And unki story bhi bahut badhiya hai, yaar. Please look it up if you haven't heard. But here we go. Malang Sajna.

सच एन आइकॉनिक सॉन्ग, झूम उठने का मन करता है यार, डांस करने का मन करता है यार, ऐसे ही गाने बजने चाहिए, राइट? इट्स सैटरडे इवनिंग, एकदम अमेजिंग, नो वर्क टुमारो, वी हैव सम टाइम टू चिल बिफोर द क्रेजी मंडे, बिफोर द क्रेजी वीक. सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सॉन्ग. इफ यू हैवंट हर्ड अ सॉन्ग that we haven't, that you would like us to play, that the Dallas folks would love, let us know, yaar. 972-235-5555. Welcome back, everybody. Welcome to all the new listeners. This is the Sunday Pop Station. वैसे हमारा संडे को शो होता है, इसलिए संडे पॉप स्टेशन है नाम, बट आज हम सैटरडे को कर रहे हैं बिकॉज देर इज अ शिफ्ट इन द स्केड्यूल जस्ट फॉर दिस वीक. बट या, दिस इज द पॉप स्टेशन विद प्रेम जोशी. मेक श्योर यू हिट सब्सक्राइब ऑन आर यूट्यूब चैनल. Follow us on social media, on Facebook and Instagram. It's called Prem Joshi Podcast. P-R-E-M-J-O-S-H-I Podcast. All right. Abhi meri bahut amazing conversation hui Trupti se, who not only hails from the same town as I am, which is Mumbai, but also from the same area. We went to this kind of the same college on the same street. So such a fascinating conversation. And it's always amazing when our listeners pick up the phone and call us. Have a conversation, ladies and gentlemen. You may never know who you meet on the other end, right? So, उन्होंने बहुत ही amazing गाना मेरे को recommend किया है, सजना है मुझे, from Vaishali Samant.

Welcome back, ladies and gentlemen. This is the Pop Station with Prem Joshi. I hope you're having a beautiful Saturday evening with your friends, family, and loved ones. बहुत सारे लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने गेट टुगेदर्स के लिए जा रहे हैं, जहां पे भी जा रहे हैं आप मेरे को साथ में लेके चल रहे हैं. You are making me part of your travel, part of the journey. Thank you so much. All right. And I know there are thousands of listeners who don't pick up the phone and call us and recommend a song. मैं उनको भी एक special thanks बोलता हूँ यार, क्योंकि आप हमें सुन रहे हो, बस ये भी बहुत बड़ी चीज है. बट टू ऑल आर अमेजिंग कॉलर्स, स्पेशल थैंक्स. आई हैव गॉट अमेजिंग रिकमेंडेशंस ऑन माय सोशल मीडिया पेज एज वेल, प्रेम जोशी पॉडकास्ट पे. हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डीएम ओपन है और आप मुझे गाने के रिकमेंडेशंस दे रहे हो. सो आई थैंक यू ऑल फॉर दैट एज वेल. PREMJOSHI पॉडकास्ट, हिट अस अ फॉलो, हिट अस अ लाइक, हिट अस अ सब्सक्राइब. And we are doing something amazing off air as well. Anila ji ne mere ko recommend kiya hai gana Kaata Laga. Yes, wo purana wala gana nahi, wo remix wala. And of course, it's an album song. And you guys know this, right? All the millennials out there, the 80s and the 90s kids out there, they know how crazy viral it was. The early 2000s mein jab ye remix albums aaye, DJ Akil hai, wagera wagera, Falguni Pathak aur sab ne jab aaye the, it was such a hit. Here we go. Kaata Laga, Baby Doll album. Can you imagine 2002? Kitne saal ho chuke hai yaar is gaane ko.

heading towards a short commercial break. Kahin jayega nahi. Ladies and gentlemen, this is the Pop Station with Prem Joshi. I hope you're having an amazing time. And humko gaane batate dijega. Phone number to aapke paas hai. पर वापस बता देता हूँ 972-235-5555 ये स्टूडियो का नंबर है आपका और मेरा साथ रहेगा 9 बजे तक सो यर वी गो

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: एक और लड्डू ले लो।
3: थोड़ी और बिरयानी।
2: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
4: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
5: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। Schedule your annual health checkup at Passion Health Primary Care. Along with blood pressure, blood sugar, cholesterol and weight checks, they also offer depression and anxiety screening, alcohol health assessment, fibroscan, vitamin B12 testing and many other preventive health screenings. Call or text 214-666-6259. Passion Health Primary Care.
6: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
7: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
5: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
7: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
5: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
6: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
8: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
8: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
9: Call now 945-527-0897 or visit astrologer Ishwar.